0: cuando está de ser.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: 눈을 따는세.
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: About 2 decades ago, he too served an entirely vegetarian menu. That's just another perspective. Here are the crucial reactions you cannot ignore this morning.
1: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते.
2: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं. जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे.
3: आपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था. कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी. तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले.
4: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है. वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं. भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं, और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा. और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है. जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं.
5: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग एंड सल्किंग नॉन स्टॉप. द रिजल्टिंग सक्सेस of the 18 BRICS summit was so comprehensive that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi had no room to criticize anything about the summit that he has now in the most petulant manner resorted to petty politics. P. Chidambaram and the other Nara's angry foofas of the Congress party had blatantly poo-pooed the 18 BRICS summit, and now it has very badly boomerang and backfired on the Congress party.
0: Well, the BRICS summit may have concluded, but the political assessment of what India achieved is underway. Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav says the summit produced nothing significant, arguing that a grouping of this size and influence should have done more to push for an end to the Russia-Ukraine war and address the conflict in West Asia that involves the US, Israel and Iran. Of course, that is a high bar. BRICS cannot itself negotiate an end to either war. But it does raise a more relevant question this morning. What did the summit actually achieve on the conflicts that are having global economic and geopolitical consequences beyond the New Delhi Declaration? Let's go across to Rishabh Pratap for further clarity on this. Rishabh, the Samajwadi Party is asking, beyond the wars, what common ground did the BRICS countries find on the issues that India had put on the agenda?
6: Well, see, this is something that is a common question that is coming out, that what have we achieved, or what has the BRICS bloc achieved from the New Delhi Declaration? New Delhi Declaration is a comprehensive document, and that talks about a lot of things. You know, the main achievement of BRICS summit is to get UAE and Iran to agree on a document, and not only that, after that, sit down together. We saw Pezeshkian and MBZ Junior to sit together, the Crown Prince of Abu Dhabi, and discuss that how they want to leave the past behind and move forward. The first thaw that we are seeing in West Asia since February 28th when Iran was attacked. After that, Iran went into an asymmetric warfare, and all the adjoining Gulf countries, the GCC countries, were

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: स्वाद।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्टियोर मसाला।
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोल।

0: Congress is organizing. We now have a reaction from PC Sharma. Listen in to what the Congress has said regarding the allegations that the BJP has leveled.
1: इनके पप्पू कहते कहते वो अब सबके पापा हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि जब किसी को घर में सबसे ज्यादा लोग पापा से डरते हैं तो अब ये पूरी बीजेपी डरने लगी है तो ये पापा हो गए.
0: Well, we'll of course continue to track the finer developments. If the BJP believes that Rahul Gandhi's campaign has little credibility, then why is the Chief Minister himself spending political capital attacking it before it's happened? For now, let's turn our attention to the other big story we're tracking. There is an unusual political argument emerging from the BRICS summit, and it concerns the menu served at the Prime Minister's dinner for visiting leaders. As you know by now, the dinner was entirely vegetarian, and Congress leaders have criticized that choice, arguing that a country as diverse as ours should have served its guests a wider representation of Indian food, including meat, including fish. Rahul Gandhi, Pawan Khera, Mahua Moitra, and others have all commented on the menu. And the BJP in its defense argues that the criticism is misplaced, pointing out that the dinner showcased a wide range of Indian vegetarian cuisine and accusing the opposition of politicizing food. But you must note, for the opposition, this is being presented as another example of what it sees as the government's preference for a particular idea of Indian identity. Rahul Gandhi says 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM's Waris Pathan also took a jibe, saying the Fufa, Mamu, Khalu will be upset. For the government, though, the criticism is evidence of an opposition looking for something to attack after a summit it believes went well for India. The BJP is now saying the success of the BRICS summit was being overlooked. This, as sources have now told us at NDTV, that all chief ministers had been invited to the BRICS dinner, but no opposition chief minister attended. And another point of view is also emerging, with the former Icelandic president saying that when he hosted the president of India in Iceland more than two decades ago, he too served an entirely vegetarian menu. Now, that's just another aspect of this. Here are the crucial reactions you cannot afford to ignore.
2: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते.
3: वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं. जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे.
4: अपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की, और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था. कम से कम डिनर में तो जो है एक साझी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी. तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले.
5: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है. वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं. भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं, और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा. और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है. जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं.
6: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग and sulking non-stop. The resounding success of the 18th BRICS summit was so comprehensive that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: நடந்த இந்த விஷயம் அஜித் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் பெருந்தன்மையா அந்த அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டு அவரும் அவரோட டீமும் பங்குபடுற போய் பிளாக் ஹாய்ஸ்ட் பண்ணி அதை ஓபன் பண்ணி வச்சதுல எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி. இதுல இருந்து என்ன அவங்க சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா, தலையோட ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, தளபதியோட ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, எல்லாருமே ஒத்துமை கண்டிப்பாக அது சொல்கிறதே நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தான். யாரும் தனி நபருடைய விமர்சனம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத எல்லாருக்கும் தாழ்மையாக அவர் கேட்டுக்கிட்டாங்க.
1: Now there is an unusual political argument that's emerging from the BRICS summit, and it concerns the menu that was served at the Prime Minister's dinner for visiting leaders. The dinner was entirely vegetarian, and the Congress leaders have criticized that choice, arguing that a country like India that has, you know, diverse tastes, and of course talking about how the guests should have been served a wider representation of Indian food, which also includes non-vegetarian. Rahul Gandhi on his side said 80% of Indians are eating non-vegetarian food. Pawan Khera, Mawa Moitra and others have all commented on that veg menu. The BJP, in its defense, argues that the criticism is misplaced, pointing out that the dinner showcased a wide range of Indian vegetarian menu and accusing the opposition of politicizing food. For the opposition, this is being represented as another example of what it sees as the government's preference for a particular idea of Indian identity. Rahul Gandhi has mentioned how many people eat vegetarian food. In fact, he said that is on record. Then we have Varis Pathan also taking a jibe, in fact saying that the Fufa Mamu will be upset. And for the government, the criticism is evidence of an opposition looking for something to attack after a summit it believes went very well. The BJP is in fact saying this really points to the success of the summit, given the fact that they have nothing else to criticize.
2: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
3: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
4: अपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की, और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। कम से कम डिनर में तो जो है एक साझी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
5: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं। भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं, और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा। और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं।
6: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग एंड सल्किंग नॉन स्टॉप। The resounding success of the 18th BRICS summit was so comprehensive that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi had no room to criticize anything about the summit that he has now, in the most petulant manner, resorted to petty politics. P. Chidambaram and the other Naras, angry Fufas of the Congress party, had blatantly poo-pooed the 18th BRICS summit, and now it has very badly boomerang and backfired on the Congress party.
7: इसका सम्मेलन का एक हर एक निश्चित अवधि के बाद किसी न किसी देश में जो मेंबर है उसके सम्मेलन होता है. अब देखिए इसका रिजल्ट तो कुछ अभी खास आया नहीं. अगर ये ब्रिक्स वाले आपस में मिलके यूक्रेन और रूस के युद्ध को ही बंद कराने की कोशिश कर देते, ईरान और उस पर झमेला है उसको भी ईरान की राष्ट्रपति थे या इसी तरह से समझाते, क्योंकि सारी दुनिया में इस युद्ध का लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ रहा है सारी दुनिया में, कोई बिना प्रभावित हुए हो ही नहीं रहा है.
1: And former External Affairs Minister and senior Congress leader Salman Khurshid has demanded transparency from the Union government regarding discussions between Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping during the BRICS summit, urging the centre to brief the opposition on the outcome of that high-level engagement.
8: देखिए ये हमको जानकारी इसमें मिलनी चाहिए और आप अभी अधिवेशन समाप्त भी नहीं हुआ और आप ये मांगे कि इसकी जानकारी फौरन दे दीजिए. जो आपस की वार्ता हुई है, प्रधानमंत्री की जो वार्ता राष्ट्रपति जी से हुई है, चाइना के राष्ट्रपति से हुई है, वो क्या हुई है, उसमें कौन सा बिंदु उठाया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया चाइना की रही और आगे क्या रास्ता या क्या मार्ग उसमें आगे देखा गया है, समझा गया है, अनुमान लगाया गया है, इस पर अगर खुलकर सरकार विपक्ष के साथ बैठकर साझा करे अपनी बात तो फिर इस पर कुछ कहा जा सकता है. ये तो वो बिंदु हैं जो हमने पहले से संकेत जिनके बारे में दे रखे हैं और जिन पर हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जवाब हमको देगी. आज तक तो नहीं दिए हैं.
1: Now, after the controversy over the proposed documentary screening on Omar Khalid at Bengaluru's National Law School of India University, that has now been postponed. The program that was slated to, that a viewing would have taken place, the screening would have taken place at 7 o'clock this evening, but it has been postponed. The AVVP had earlier demanded that the proposed screening be stopped altogether. It has questioned the decision basically to showcase Omar Khalid's life to students and alleged that the event is part of an attempt to establish a particular narrative. We have Karnataka Deputy Leader of Opposition also there targeting the Congress over the proposed screening. In fact, he has gone ahead and alleged that the move amounts to support for what he's called anti-national forces and accusing the Congress of pursuing vote bank politics.
9: देखिए असल में ये बिल्कुल गलत बात है. इसकी वजह ये है कि जब तक के conviction ना हो उस वक्त तक के हमारी कोर्ट की धारणा यह है कि वो आदमी इनोसेंट है. ए पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूफ अदरवाइज. जब तक कि कोर्ट से कोई आदमी मुजरिम साबित ना हो जाए उस वक्त तक के वो बेगुनाह है, मासूम है. तो इस बुनियाद पे स्क्रीनिंग नहीं होने देना, ये दादागिरी है एबीवीपी की, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए.
10: बिल्कुल उस स्क्रीनिंग को रोक दिया जाना चाहिए. हम किस व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्री विद्यार्थी को दिखाना चाहते हैं ये सोचना चाहिए. ऐसा व्यक्ति उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाता है जेएनयू के अंदर, उसकी डॉक्यूमेंट्री क्या विद्यार्थियों को दिखाएंगे क्या? ये कर्नाटक सरकार जो है ना, एक तरीके से ये षड्यंत्र पूर्वक कर्नाटका के विद्यार्थियों के बीच में ऐसा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद इसको रोकने की मांग करती है. हमने वहां बेंगलोर में जिला प्रशासन को, वहां के संबंधित अधिकारियों को आगाह किया है कि इसकी स्क्रीनिंग रोक दी जाए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, स्क्रीनिंग हम चलने नहीं देंगे.
11: इट्स अ ट्रेजेडी दैट कांग्रेस is going to any extent to woo Muslims and do support anti-national activities. Umar Khalid, who is under judicial custody, who is under investigation because of his anti-India stand what he has taken, and he is part of the Tukde Tukde gang also. Congress, in order to support this Tukde Tukde gang and to support these anti-national forces, and in just with the intention of getting Muslim votes during upcoming UP election, they want to come out with the documentary.
1: Right. Right, let's just also move on that India has once again snubbed Mohsin Naqvi at the Asia Cup after India's record 8th Women's Asia Cup, the win in Dubai. The presentation ceremony was delayed and the team refused to receive the trophy from the chief of the ACC, Mohsin Naqvi, who is also Pakistan's PCB chief and interior minister. The move basically mirrors last year's Men's Asia Cup final when India also refused to accept the trophy from Naqvi. Now, BCCI secretary has said that the decision was taken in solidarity with the men's team, which had also refused to accept this last year. So this is 2 years in a row, citing that the ongoing military conflict with Pakistan, and said that India would continue to play multinational tournaments as per the government policy, but would not accept every condition laid out.
12: Trophy एक controversial चीज़ है अभी Asian Games में, Asia Cup में. जिस देश का साथ हमारा ताल्लुकात आज पहले से खराब है, लेकिन अप्रैल 2025 से काफी बिगड़ गया है, और जिसका साथ हमारा आज तक भी ऑपरेशन चालू है. सो उस देश का जो मेन वन ऑफ द मेन लीडर जो हमारा देश का अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनका हाथ से हम ट्रॉफी नहीं ले सकता हूं. सो वो हमारा 1.5 साल पहले जब एशिया कप मेंस में हम लोग ट्रॉफी नहीं लिया, उसी का साथ सॉलिडरिटी रखकर हमारा महिला दल भी आज डिसीजन लिया कि वो लोग भी वो जो सॉलिडरिटी है उसको बरकरार रखकर सेम सिचुएशंस पे हम लोग ट्रॉफी कबूल नहीं किया.
13: The stand has been taken by BCCI and we are united and you know, standing by it, absolutely. Yeah, for us, this tournament is officially over. You know, the fact that we are champions, we are really glad, and I'm really proud of every single person in this unit, including the support staff and the players, needless to say. So yeah, we are looking forward for the Asian Games now. This is officially over.
1: Moving on now, days after Anthropic chief talked about slowing down as far as the development of AI is concerned, we have Elon Musk and OpenAI's CEO Sam Altman backing the idea. And now adding on to that list is the Microsoft CEO Satya Nadella, who has also weighed in the same. Nadella's message comes with a slightly different emphasis. He is not calling for a halt to the AI race. Instead, he wants the industry to slow down enough to get the safety mechanisms right, while making sure that technology does not slip out of the human control. He says that if AI we build is not helping humanity and is not under the control of humans, it's not worth pursuing. Let's just also get you the latest, and this is in regard to more news coming about from the United States. It's President Donald Trump who's pushing back against calls for tougher checks on artificial intelligence. Trump says that the U.S. cannot afford to slow down, especially when China is racing to catch up. Trump has acknowledged that some regulations may be needed, but he has warned against measures that could weaken the lead as far as America has in that very line of artificial intelligence. His comments come amid growing concerns inside the AI industry itself. So do remember, Anthropic CEO just a few days back had called for the industry to slow down the development of increasingly powerful AI systems. The debate has intensified after the former Anthropic researcher publicly resigned, warning that there is a 10% chance that AI could kill all humans within a few years. For Trump, the answer appears clear. America just needs to, you know, protect its lead. And that is something America must protect its lead, because in his opinion, in the race for AI supremacy, China cannot be allowed to get ahead. Let's listen in to how contradictory Donald Trump's statements are to what others in the industry are saying.
14: Well, I say this, look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins. And we can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces that are bringing it up that shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins.
1: Donald Trump there talking about whoever wins AI is going to be leading, and that is exactly where his focus is. A double-edged sword there. And of course, the experts warning against the development of AI at the race, at the pace it really is. With that, it's a wrap on this edition. News and updates will continue on the other side. Thank you for watching.

watch this video till end. Please watch this video till end. आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा मेरा

0: एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया। एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से। सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस।
1: All right, some breaking news coming in at this moment.

0: ये कहा जाएगा कि देश की सफलता रास नहीं आ रही, कांग्रेस को बुरा लग रहा है कि सब कुछ इतना अच्छे से क्यों हो गया। अच्छा पहले ही आपको एक नाराज फूफा आप लोगों को एक टर्म के तौर पे बताया,
1: आपने बड़ा अच्छा बोला नाराज फूफा। आपने देखा शादियों में जो पुराना दामाद होता है जिसकी शादी पहले हो चुकी होती है, बेचारे से कैसे क्या रवैया होता है उसका, भाग भाग के बेचारा काम कर रहा होता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो रही बात कि साहब आयोजन सफल था,
0: ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो गया,
1: आयोजन सफल था। अब ताज मानसिंह में एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हो और ताज मानसिंह वाला उछल उछल के बोले साहब देखो शादी करवा दी मैंने, शादी हो गई, तो उसमें किसको क्रेडिट जाएगा? ताज मानसिंह को जाएगा क्या? अंकित जी तो जानते हैं कि वेडिंग और मैरिज में बहुत अंतर होता है। वेडिंग अच्छी हो गई मतलब नहीं कि मैरिज बहुत अच्छी चलेगी।
0: तो कुल मिला के आपको लगता है कि ये जो आयोजन था, ये
1: सवाल पूछे अपने अभी आप ही से सवाल पूछे हमने कि भाई ये बताइए क्या चीन से जब हम बात कर रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछे, क्या गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां अब हम नहीं जा पाते उसके बारे में सवाल पूछे, क्या हमने अरुणाचल के बाहर के बाद जो बॉर्डर है उस पर जो गांव बसाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस पर सवाल पूछे, क्या हमने अमेरिका की खुलकर निंदा की, पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, खतरे में डाल दिया, उस पर हमने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, क्या इसराइल का नाम लेकर उसकी निंदा करने की हिम्मत दिखाई? तो और छाबर पोर्ट के बारे में तो हम बात ही नहीं करते जहां हम इतना पैसा लगा चुके हैं, उस पर अब हम बात करना ही बंद कर दिए, क्या दबाव है साहब?
2: ओके
1: ये सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ तालियां बजाएंगे साहब शादी अच्छी हो गई।
0: तो सुना
2: All right, Jainendra, thank you for joining us. Jainendra, in fact, getting us the reaction from the Congress Member of Parliament, Pawan Khera, who has not only slammed what Ravi Shastri's tweet was after he saw that picture and he tweeted Congress reminding him that, you know, this in 2012, this with Prime Minister Manmohan Singh was, in fact, the Prime Minister, a similar event took place in the national capital where all these leaders did come. The leaders at that point of time of these countries had also joined in. Now, Congress leaders are slamming the women Indian team trophy snub. Vijay Wadthiwar, Congress senior leader, has said on the Asia Cup trophy controversy, Pakistan policy have always been anti-India. They are consistently destabilizing the country by sending infiltrators as if it is natural to react like this. But on one hand, we all left the country aside for our recent BRICS summit, and all the countries showed up. We moved past it through discussions. These are the latest, in fact, details coming in at this moment. Let's listen in.
3: ये कुछ सांकेतिक चीज़ें भी होती हैं। आप ने देखा ना, जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई, वहाँ युद्ध भी हो रहा है, आपस की दूरियां भी हैं, कश भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है। तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कारणवश हमको दूरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ सांकेतिक होती हैं। क्रिकेटिंग बॉडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि इसको संदेश देने की आवश्यकता है और हम ऐसे संदेश देंगे, तो उस पर और क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि उनका अपना निर्णय है और उचित निर्णय होगा, सोच समझ के किया होगा।
4: पाकिस्तान की नीतियां हमेशा भारत विरोधी रही है, वो देश की नीतियां हमेशा भारत को दुश्मन बनकर ही उनके नीति को वो आगे बढ़ाते हैं। इस स्थिति में जो जिस तरह से उन्होंने भारत देश के साथ में व्यवहार उनका चलता है और हमेशा घुसपैठियों को घुसाकर देश को अस्थिर करने का काम किया जाता है, तो उससे तो स्वाभाविक है कि इस तरह का रिएक्ट होना और नहीं लेना, मैं बोलता हूं कि देश के लिए अच्छा ही है। हम लोग चर्चा से आगे बढ़े, हम लोग चर्चा से सुलझाए, पर इस तरह अपन एकमेक के दुश्मन है करके हम कितने साल और निकालेंगे और कितने साल एकमेक का दुश्मन बनकर बाकी

0: Pak Gurugram police have taken suo motu cognizance of the case and registered the FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and had given it to a friend who has been identified as Kalyan. Now, we now play out this disturbing sequence of events that took place on Sunday morning that have raised important questions on the law and order situation in Gurugram.
1: आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था वो कुछ एक्शन करता है मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है जब उसने मुझे मारा मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ तुम्हारी गलती है उसने बोला मेरी गलती नहीं है वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम इन सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें
0: Let me, in fact, at this moment, introduce my colleagues, Tejshri and Anushka, those who are, they are tracking this story. Let's first go across to Tejshri, who is with the top police officials in Gurgaon to try and get an update on what's the police doing at this moment. Tejshri, over to you.
2: Well, it's absolutely a very shocking incident has come to light, the manner in which we have been also seeing the video. But what actually is the update in the investigation? To speak more on this, I'm being joined exclusively by ACP Abhilaksh Joshi. Abhilaksh, thank you for speaking to NDTV. Sir, is pure mamle mein sabse pehle to kya update hai? Aap bata payenge ki kya kuch ghatna hui thi us din Golf Course Road par jab ladki ka peecha kiya ja raha tha car ke dwara?
3: Ji. गुरुग्राम पुलिस के जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक वायरल वीडियो को इंटरसेप्ट किया गया जिसके अंदर एक टू व्हीलर पे एक राइडर थी महिला राइडर जिसको फोर व्हीलर के पीछे से जो है हिट करने का जो मामला है वह वीडियो में सरफेस हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारी जो टीम के द्वारा इसको इंटरसेप्ट करने के बाद सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर जो है अभियोग अंकित कर दिया गया है और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग और अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो भी है लीगल एक्शन वह लिया जाएगा
2: अभी अक्यूज्ड को लेकर क्या कुछ अपडेट है क्या अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है अभी तक या फिर उसकी जानकारी मिली है कि अक्यूज्ड कहां से है
3: जी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएंगी अभी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो विक्टिम है उन्हें भी संपर्क किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो अन्य जो एविडेंस हैं वो रिकॉर्ड पे लेके एक्यूज को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वह लिया जाएगा
2: गाड़ी जिसको बिलोंग करती है क्या गाड़ी वही व्यक्ति चला रहा था या फिर कोई और चला रहा था और गाड़ी में कितने लोग थे अभिलाक्ष जी
3: देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये वीडियो क्योंकि हमारे पास आज ही सरफेस हुई है और जैसे ही ये वीडियो हमारे पास आई है जो हमारा जो स्पेशल मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा ये वीडियो को जैसे ही इंटरसेप्ट किया गया तो तुरंत हमने इसमें अभी कॉग्निजेंस लिया है और अकॉर्डिंगली ये जो डिटेल्स हैं ये सब डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और तुरंत ही इसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई अभी की जाएगी
2: विक्टिम जो है उसका क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ घटना हुई थी क्योंकि उसका ये भी कहना है कि वो देख रही थी कि काफ़ी समय से उसे फॉलो किया गया था और उसने मना भी किया कि आप पास से गाड़ी मत लाइए फिर भी उसे फॉलो किया गया
3: जी गुरुग्राम पुलिस द्वारा जो विक्टिम है उनसे भी संपर्क भी जो है वह किया जा रहा है और उनसे संपर्क होने के उपरांत जो उनका जो डिटेल स्टेटमेंट है वह रिकॉर्ड किया जाएगा और अकॉर्डिंगली वह जैसे ही अपने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे उनको भी हम फाइल पर लेके और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रोसीड करेंगे
2: लेकिन सर दिन दहाड़े इसी तरह से घटनाएं हो रही हैं रात को तो हमने रोड रेज के एक्सीडेंट्स देखे ही हैं जहां पर
0: पेशी इफ यू कैन हियर मी कैन यू आस्क अ क्विक क्वेश्चन बिकॉज़ द ओनर ऑफ दिस व्हीकल हु वाज

0: नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का।
1: Moving on now, Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping's bonhomie at the BRICS summit has now triggered questions from the Congress. Prime Minister Modi and the President of China held a bilateral meeting on the sidelines of the summit, with both sides discussing India-China relationship and the way forward. But Congress MP Pawan Khera has questioned whether India raised its core concerns during the talks, including situation along the line of actual control, Ladakh and Arunachal Pradesh. He said India has not forgotten the 20 soldiers who were killed in the Galwan clashes, and argued that bilateral talks and joint statements cannot be enough.
2: चीन के साथ bilateral बात हुई, क्या उसमें हमने लद्दाख और अरुणाचल की बात की? लाल कालीन बिछाना आसान है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे। क्या यथास्थिति लद्दाख में 2020 जून से मई से पहले की वो बहाल हुई? क्या चीन की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की मदद करने की रही, उस पर हमने कोई सवाल पूछे? तो 20 हमारे शहीद हुए थे जवान गलवान में, हम उनको थोड़ी भूल जाएंगे। आप करते रहिए बायलैटरल, करते रहिए, आप निकालते रहिए ज्वाइंट स्टेटमेंट्स।
3: ये हमको जानकारी इसमें मिलनी चाहिए, और आप अभी अधिवेशन समाप्त भी नहीं हुआ और आप ये मांगें कि इसकी जानकारी फौरन दे दीजिए। जो आपस की वार्ता हुई है, प्रधानमंत्री की जो वार्ता राष्ट्रपति जी से हुई है, चाइना के राष्ट्रपति से हुई है, वो क्या हुई है, उसमें कौन सा बिंदु उठाया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया चाइना की रही, और आगे क्या रास्ता या क्या मार्ग उस पर आगे देखा गया है, समझा गया है, अनुमान लगाया गया है, इस पर अगर खुलकर सरकार विपक्ष के साथ बैठकर साझा करे अपनी बात, तो फिर इस पर कुछ कहा जा सकता है। ये तो वो बिंदु हैं जो हमने पहले से संकेत जिनके बारे में दे रखे हैं, और जिन पर हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जवाब हमको देगी। आज तक तो नहीं दिए हैं।
1: The menu that was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and says that it is sulking. Rahul Gandhi said 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM leader Waris Pathan also took a jibe at the BJP, saying Fufa, Mamu, Kalu will be upset. BJP hit back, saying the opposition had nothing but a menu to criticize.
4: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
5: क्या इसको आगे और पॉलिटिकली उठाने की तैयारी है?
2: बात है इस मेन्यू के पीछे की मानसिकता को हम शुरू से चुनौती देते आए हैं, आज से नहीं, 100 साल से। अगर आरएसएस 100 साल पुराना है, हम भी 150 साल पुराने हैं, तो हम भी इस मेन्यू के पीछे की मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं। ये मानसिकता वही है कि नागपुर तय करेगा कौन क्या कपड़े पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन किस भाषा में बात करेगा। तो नागपुर तो तय नहीं करेगा, क्योंकि चॉइस इज द फाउंड बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी।
5: लेकिन किसी डेलीगेट ने ये शिकायत नहीं की? कोई जो
2: मेहमान आपके घर आकर आपकी शिकायत थोड़ी करेगा, उनमें आपसे ज्यादा ग्रेस है, ये भी हो सकता है।
5: तो क्या इसको लेके कोई आगे आप लोग इस इशू को उठाएंगे?
2: इस मानसिकता को तो हम आज से थोड़े उठा रहे हैं, 100 साल से उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे।
6: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा, ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
7: आपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की, और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। कम से कम डिनर में तो जो है एक साझी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सब सुबह।
8: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं। भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा, और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं।
9: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही मैं ऐसा मानता हूँ गलत सोच है।
10: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग एंड सल्किंग नॉनस्टॉप। द रिजल्टिंग सक्सेस ऑफ द 18 ब्रिक्स समिट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi had no room to criticize anything about the summit that he has now in the most petulant manner resorted to petty politics. P. Chidambaram and the other Naras, angry foofas of the Congress party had blatantly poo-pooed the 18th BRICS summit, and now it has very badly boomeranged and backfired on the Congress party.
11: इसका सम्मेलन का एक हर एक निश्चित अवधि के बाद किसी न किसी देश में जो मेंबर है उसके सम्मेलन होता है। देखिए इसका रिजल्ट तो कुछ अभी खास आया नहीं। अगर ये ब्रिक्स वाले आपस में मिलके यूक्रेन और रूस के युद्ध को ही बंद कराने की कोशिश कर देते, ईरान और उस पर झमेला है उसको भी ईरान की राष्ट्रपति थे या किसी तरह से समझाते, क्योंकि सारी दुनिया में इस युद्ध का लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ रहा है सारी दुनिया में, कोई बिना प्रभावित हुए हो ही नहीं रहा है।
1: Right, breaking news coming in at this moment. Disha Salian case, the CBI has registered an FIR. The persons whose roles require investigation in connection with the commission of the principal offense, criminal conspiracy, subsequent creation and propagation of false suicide theory and suppression and destruction of fabrication of evidence. This includes Aditya Thackeray, Rohan Roy, Dino Morio, Surat Pancholi, Aditya Thackeray's bodyguards, Shobhik Chakravarti, her brother, in fact, Sachin Waze, the former police officer, Parambir Singh, former Mumbai Police Commissioner, DCP Vishal Thakur, Uddhav Thackeray, Anil Deshmukh, all of these people could be of people of interest as far as this case is concerned. That is what the FIR seems to suggest. Now, this is going to be massive, ladies and gentlemen. It is going to have a lot of political connotations, and of course it's almost like revisiting what had happened earlier, and of course in the Sushant Singh Rajput case, many of these names that were heard. Remember, Disha Salian was a former manager of Sushant Singh Rajput, and somehow his fans have gone into trying to create some sort of an equivalence or some sort of a link between both these alleged suicides. Now, Radhika, my colleague, is joining us with more details on this. Radhika, this is explosive. the kind of names that we are talking about, this is going to be the biggest political story in Maharashtra now.
12: Yes, absolutely, Ankit. Several high-profile names have been a part of this particular FIR. We saw Aditya Thackeray's name, Dino Maurya's name, Riya Chakravarti, Suraj Pachuli. And these individuals, be it politicians, be it cops, be it celebrities, actors, and so on, they were all named as far as the complaint by Disha Salian's father is concerned at the time. So this incident happened. She died in 2020, post which, of course, for some time, there were no complaints raised. This was an accidental report is what Mumbai police had said at the time. But it was after Sushant Singh Rajput's death that there were a lot of talks surrounding Disha's death as well, saying that this was connected, she was murdered, she was raped and so on. At the time, initially, Ankit's parents also were not keen to really take forward the complaint. But later, parents approached the police saying they want to really take forward this complaint. She was allegedly raped and murdered is the complaint by the parents, especially the father. After which, the Mumbai police did not take any action at the time. And now the CBI are really coming into the picture after the Bombay High Court ordering the CBI to register the FIR. So all these names were part of the complaint before. Now they have been named in the FIR as well. So therefore, this makes it a very, very serious. Remember, Aditya Thackeray's counsel had also argued before the Bombay High Court, saying that this was completely politically motivated. He had nothing to do with Disha Salian or her family members. And several of the other people who've been named in the FIR also echoing the same sentiment that this was politically motivated. Some of them also going on to say that they did not even know Disha Salian. And very importantly, many of the cops who had investigated this case at the time have also been named in the FIR. Because remember, the parents, the father had raised complaints about how there were irregularities and errors as far as the investigation is concerned. So therefore, these cops also should be probed was something that the parent had said. So,
1: but
12: now,
1: just to be clear, Radhika, I just want to understand from you, what is the role that the parents have alleged as far as Aditya Thackeray is concerned? And is there Uddhav Thackeray's name also being dragged into this FIR? Aditya Thackeray's father, he was in fact at that point of time, if I remember correctly, was the Chief Minister of Maharashtra.
12: Yes, at the time when the complaint was raised in the beginning, when the death happened, so to speak, Uddhav Thackeray was the Chief Minister at the time, even during Sushant Singh Rajput's death. And what the allegation at the time was that Aditya Thackeray knew Disha Salian. There was some party that was thrown in which Aditya Thackeray and Disha Salian were a part of, and some of the other celebrities who've been named as well. And therefore, they were involved in some sort of conspiracy to eliminate her is the kind of wild allegation that was said at that time. And that there was a conspiracy to really hide evidence as far as Disha Salian's death is concerned, because Uddhav Thackeray was the Chief Minister, the police was under him. So these were the wild allegations at the time. But this is an FIR, Ankit, and these are part of the statements given by the individual Satish Salian.
1: Okay.
12: We really have to see if this can be proven, with the evidence in hand. Or with the evidence
1: absolutely
12: that will be gathered by the
1: CBI. I mean, that is going to be a challenge for the CBI in this case. But make no mistake, ladies and gentlemen, the CBI investigating this case, a central agency, name of Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray in the FIR, this is going to blow up politically in Maharashtra. This is, in fact, not the last that you have heard on this case. This will have far-reaching consequences. All right, with that, we are slipping into a short break. Thanks, Radhika, for joining me. Quick break, ladies and gentlemen. Much more lined up for you. Stay tuned. We are coming back.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Continued chasing her despite being asked to maintain distance. You can see her indicating to the car to maintain some distance. The car then allegedly cut in, hit her bike. That is what you're seeing there, and threw her onto the road. Imagine if we didn't have these visuals, we wouldn't even know that something like this could have happened. It dragged her several meters. Then her co-rider chased the car. He's the one who's chasing the car and asking for the car to stop. It stopped at a red light. He confronted the driver, but then it sped away again. Now in a major NDTV impact, the Gurugram police, after we started reporting the story from the morning, from the time we saw that this video of what has taken place, this video is viral, and when we saw what had taken place, we have started demanding action be taken. And since then, the police have taken cognizance and registered an FIR, even though they're saying the woman has not registered any complaint till now. The car owner told NDTV he was not driving and that a friend identified as Kalyan Besla had borrowed the vehicle. That's what Anushka too said. We now play out the entire sequence of the incident. Take a look.
1: आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ. एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
2: Abhilakshji, there is another incident within Gurugram which has come to light where, you know, it is a bike rider actually who has recorded a video. Actually, the video was recorded on the dash cam and then she has put it over the social media as well. What update do you have on that matter as well about the accused and the FIR being filed, keeping in mind that the road rage residents, the rash driving has become so common in the night but now in the daytime as well?
3: In this regard, under the aegis of Gurugram Police, we have a social media monitoring cell. And social media monitoring cell intercepted a footage, a video which was going viral over the internet, in which a two-wheeler lady rider was going on and a four-wheeler car hit her from the behind. And in this incident, a suo moto cognizance has been taken by the Gurugram Police and FIR in the police station Sector 65 has been lodged in this regard. And accordingly, I wish to convey to all the listeners also that Gurugram Police, Gurugram Traffic Police, social media monitoring cell and a dedicated cell with respect to these kind of incidents like road rage, negligence, kind of driving, rash driving happening. We are strictly watching and accordingly the strict most legal actions are being taken in this regard and they will be taken accordingly.
4: दिल्ली के गुड़गांव में कल एक मेजर एक्सीडेंट जो है वो होता है. एक बाइकर लड़की जो है गुड़गांव के गोल्फ कोर्स से जब बाइक राइडिंग करती है तो उस वक्त जो है एक बड़ी गाड़ी जो है वो आके हिट करती है. लड़की पहले जो है बाइक जो चला रही थी वो गाड़ी वाले को उसने इशारा किया रोकने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी वाले ने सबसे पहले आकर उस बाइकर को रोकने की कोशिश की, उस लड़की को जिसका नाम शिवानी शर्मा है. और उसके बाद जो है उसने जब नहीं माना तो उसको हिट करके वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई. फिलहाल देखिए मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ. ये बाइक जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक जो है वो यहाँ पे तैनात है. और यही जो बाइक है इसका इस्तेमाल जो है कल शिवानी शर्मा कल कर रही थी राइडिंग के दौरान, और जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ. हालांकि उनकी फैमिली का कहना है कि मेजर उनको चोट नहीं आई है, लेकिन स्टिल कल गुड़गांव में जिस तरह से गोल्फ कोर्स पर एक्सीडेंट हुआ शिवानी

0: और उसमें ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी को लेकर नेटफ्लिक्स की तरफ से एक सीरीज भी आई है, लेकिन ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता के ऊपर गुरुग्राम में बीते रोज हमला होता है और जिसके बाद फिलहाल उनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है।
1: 10 सितंबर की रात को हम लोग रेस्टोरेंट में खाने खाने गए थे मॉल में। सो वहां पे जब फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी पार्क करने गया था, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो पार्क ही नहीं करने दे रहे हैं गाड़ी को। और 3 4 जगह गया ऑथराइज पार्किंग लॉट में, पार्क नहीं करने दे रहे हैं और बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो फिर मैं जब वापस कर रहा था गाड़ी, तो एक अटेंडेंट गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा, जोर जोर की मारने लगा। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी रोक के मैं बाहर निकला कि भाई तुम गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ रहे हो, उसने सडनली गाड़ी के सामने आया, एक हैवी रॉड लेके आया और 2 बार मेरे, एक बार पहली बार मारा मेरा पूरा हड्डी तोड़ दी और दूसरी बार मेरे सिर पे मारा, ये जो चोट है और ये हाथ पे राइट हैंड पे है।
2: All right, so two shocking cases emerging there from Gurugram. With that, we'll slip into a short break. More news on the other side.

का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharatam. From ideas to impact, from dreams to nation building, let the journey begin. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटोर्स को. So please welcome beauty और grooming industries के king माने जाने वाले, vision को business में बदलने वाले Rene Cosmetics के founder आशुतोष बलानी. Hi Ashutosh.
1: Hello, how are you?
0: Welcome to Vande Bharatam.
1: Thank you so much.
0: 26 साल के बैंकिंग के तजुर्बे से इन्होंने सिखाया कि असली वैल्यूएशन हाइप में नहीं, हिसाब में होती है. प्लीज वेलकम कैक्टस पार्टनर्स के मास्टरमाइंड और स्टार्टअप इकोसिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर, ऑल्सो नोन एज एंटी पावर लॉ इन्वेस्टर, मिस्टर राजीव खालम्बी. हाय राजीव, वंदे भारतम किस मंच पर आपका स्वागत.
1: थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट. एक वक्त था जब 10 लाख का लोन मिलना भी इनके लिए स्ट्रगल था, और आज इन्होंने नियरली 1700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है. हमारे इनोवेटर्स के लिए इनसे बड़ी इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती. शी इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज. प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट मेंटोर, उज्वा की को फाउंडर आरती गिल. Hi Arti, welcome to Vande Bharat.
2: Thank you so much.
0: Please have a seat. हर बिजनेस को एक फाउंडर मिल जाता है, लेकिन हर बिजनेस को उसे नए शिखर तक ले जाने वाला लीडर नहीं मिलता. 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स और लाखों सेलर्स के ग्रोथ पार्टनर, प्लीज वेलकम फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति. हाय कल्याण, सो गुड टू हैव यू ऑन वंदे भारतम.
3: इट्स अ प्लेजर राजू. थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट.
3: थैंक यू.
0: इन्होंने 22 साल की उम्र में एक मैनेजमेंट ट्रेनी से अपना सफर शुरू किया और आज इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी को लीड कर रहे हैं. जैसे इन्होंने अपने पिताजी गौतम अदानी जी की विरासत और पोर्ट बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक वैसे ही आज इस नए मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी. Hi Karan, thank you for your time and thank you for coming to Vande Bharat. Please have a seat. Welcome to Vande Bharatam. Karan, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे.
1: One advice I would give is के keep working hard, be grounded and never give up learning because every day there is something new to learn from everybody who you work with.
0: And that's got to be a motto of your family, na? Be grounded. And that's one thing that comes across loud and clear. Be grounded. And that's how you should be living, I think. You know, be grounded. I think that's one thing that they should learn. Unko ye samajh mein aana chahiye, kyunki yahan se jaane ke baad mein jab wo udaan bharenge, to ye advice bahut kaam aayegi ki please always be grounded. So welcome to Vande Bharatam. Shuru karte hain. Bulaye hamare jo innovators hain. To hamare jo pehle innovator hain, wo mere shares hain. Jaipur se hain. बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें बिजनेस करना आता है और मुझे एक्टिंग, लेकिन

0: The beauty of this platform is ये इतना inclusive है कि हम दोनों साथ में इस मंच पर खड़े होंगे. Please welcome Frontier Market की innovator अजयता शाह, जयपुर राजस्थान से. So nice to have you here.
1: Thank you so much for having me.
0: मेरी छाती ना ऐसे समय सीना जो है वो चौड़ा हो रखा है मेरा, क्योंकि आप जयपुर से हैं, आप मारवाड़ी हैं, और उससे ज्यादा इसलिए कि आप उन लोगों को सशक्त बना रही हैं जिन्हें बहुत पहले सशक्त हो जाना चाहिए था. आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन. यू नो, टू मेक अ वुमन स्पेशली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, फ्रॉम अ विलेज, टू मेक अ फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज आई हैव फिगर्ड दिस एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट सब कुछ करती हैं वो, बस उन्हें एक मलाल रहता है उनकी जिंदगी में कि उन्हें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस नहीं होता है. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. I think your pitch is ready. I'm very, very sure.
1: Yeah.
0: You look very confident.
1: I'm happy to be here.
0: So. Yes, and we're happy to have you here.
1: Yep.
0: और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
1: So hello, mentors. I am Ajita Shah, founder of Frontier Markets. भारत इंडिया के tier 4, 5, 6 गांवों को villages अगर अपन देखें तो आज भी 80 करोड़ ऐसे जने हैं जिनके पास उनके जो products और services की जरूरत होती है वो पहुंचते नहीं है उनके पास. और ऐसा नहीं है कि solutions नहीं है, innovators नहीं है. But to reach 7 lakh rural villages in India, you need infrastructure, you need deep rural customer understanding, and most importantly, you need a trusted distribution network. So what is the solution? It's women. Why? Because mahila jo hai, unke paas bahut badi poonji hai bharosa ki, aur wo literally kundli nikal sakti hai sab logo ki. So welcome her into our Frontier Markets platform. Frontier Markets has become the rural distribution infrastructure, layering an operating level with women and a scale level with technology. Using our AI-enabled Meri Saheli app, Sahelis become, they become entrepreneurs, but they become digital dukans. And that was the vision, but she's also using technology to gather customer insights, do demand generation, build credit history, facilitate assisted commerce, and then do delivery and services. We've done about 800 crores worth of sales on products and services. We have about 210 plus partners on our platform that help us deliver the services to the last mile. And we are in 5,000 villages across 4 states of the country. Hum yahan par kyun hain? Hum chahte hain ki 10 lakh saheli hone chahiye. And we should be able to service every single rural family in last mile delivery. But also, we're looking for product partners and brands and innovation. So join us in getting involved. I'd love to understand ki aapke level pe hum kaise jud sakte hain aapke saath to scale this. आज 4 स्टेट्स में हैं एंड हर स्टेट में गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है, बट वो गवर्नमेंट के पार्टनरशिप्स और बढ़ाने हैं. सेकेंडली, आज हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आ रहे हैं वो कम है. वी नीड मोर इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट. एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, स्ट्रेटेजिक कैपिटल अलाउज अस टू बिल्ड आवर टेक्निकल कैपेबिलिटीज. सो दीज आर प्रॉब्ली द 3 मेजर आस्क्स फ्रॉम माय साइड.
2: दैट्स ग्रेट वर्क अजयता. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी कांग्रेचुलेट यू. बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को नहीं भारत को केटर करते हैं, और ये उनमें से एक है. तो सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एम्पावरिंग वुमेन ऑफ इंडिया एंड डूइंग राइट बाय भारत.
3: यू हेल्प द लेडीज सेट अप देयर ओन बिजनेस, इज दैट व्हाट यू डू?
1: हमारे एसईजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज 15 करोड़ महिलाएं दैट आर पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड मिशन, उसमें से लगभग 25% आर नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स. Which means कि कोई ना कोई दुकान या टेलरिंग का काम या ब्यूटी पार्लर या घर से कुछ बना करके वो बेच रहे हैं. सो उन्होंने टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया था बिफोर वी इवन एंटर्ड, और वो एसएजी के साथ जुड़ी हुई है. हम आते हैं, सो वी डिजिटाइज हर, वी बिल्ड हर कैपेसिटी एंड वी डाइवर्सिफाई हर इनकम अपॉर्चुनिटी.
4: कैन यू वॉक ऑल ऑफ अस, बिकॉज़ आई थिंक एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर्स.
1: सो आवर जीएमवी लास्ट ईयर वाज 226 करोड़, ईयर बिफोर दैट वाज अबाउट 100 करोड़. This year will be lagbhag around 450 crores. Our ratio in terms of the GMV is split based on FMCG, agriculture, digital banking services, and consumer durables. And like, let's mix that basket.
5: Just out of curiosity, is there a solution is the same for across all the states, or is it? Or you found that certain things work in one state, certain things don't work in another?
1: So I think, sir, consistency is the key to the devil's in the details, right? So SEG ka jo infrastructure hai, it's actually quite nationalized, right? So wo infrastructure, wo reach, National Rural Livelihood Mission, wo sub is the same in every state. Obviously, language is different, but language is an easy insertion. The role of a entrepreneur is exactly the same. These women are eager to earn income. What we also know is they don't want to leave their village. वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं. वो 10 गांव को संभालना नहीं चाहते हैं. वो literally उनके पास, honestly मैं बता दूँ, 5 से 6 घंटे का time है. सुबह बहुत सारे काम हैं, शाम को बहुत सारे काम हैं. तो वो 5 घंटे में वो क्या कर सकती है, जहाँ वो कमाई कर सकती है, नाम भी बना सकती है एंड सुविधाएं भी लेके आ सकती है. तो वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक्चुअली अगर आप टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 के गांव में देखो, इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम. सब किसान फैमिली हैं, राइट? 80% इज किसान फैमिली. तो वो स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दिस इज बिकम अ वेरी इजी मॉडल. सो हम लोग गुजरात में हैं, आंध्रा में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान में हैं. We're about to enter Bihar, Jharkhand, and Maharashtra because now we're getting invited.
6: You're raising the money right now towards OPEX?
1: It's more for tech.
6: For tech, okay.
1: It's a tech build, and it's an HR build. We want to bring in more senior folks because there's a bunch of things that we need to bring in that will allow us to strengthen.
6: Yeah, please let us know if we can be helpful in any way. I think. It's a noble cause you're pursuing and takes a lot of courage to do what you're doing.
5: I think it would be great if we can connect separately. Our foundation team would love to engage with you.
1: I would love that.
5: We work in almost 323 different locations.
1: Yeah.
5: And most of our engagement is in rural. So we would love to see how we can help in terms of increasing your reach over there.
1: That would be amazing.
2: No, so Karan, I think time for a wings.
3: Golden wing here. I was just thinking the same thing.
5: You guys think?
3: Yeah?
5: Yeah?
3: Okay.
1: Thank you.
5: Thank you so much.
1: I'm really looking forward to
5: giving you an idea.
1: Like, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody.
7: Thank you. You're amazing.
1: Thank you.
2: Best of luck.
7: Thank you.
0: How are you feeling?
1: I'm feeling now calm because ab khatam ho gaya. But also quite excited ki ab shuruaat ho gayi.
0: To hamare Vande Bharatam parivar ki taraf se ek chota sa tohfa hai aapke liye. Ye dekhiye.
8: Ajita ma'am, main yahi kahungi ki aaj jin महिलाएं जो गांव में घरों में बैठकर अपना सिर्फ पति पर डिपेंड थी, उन महिलाओं को घर से निकालकर उनके हस्बैंड के साथ कंधा मिलाकर खड़ा जो कर दिया है, इससे उनकी परिस्थितियां तो सुधरी हैं. उसके साथ साथ उनकी पहचान भी बनवाई है मैम ने.
9: ऑनलाइन के बारे में तो महिला तो बिल्कुल जानती नहीं थी. आज हमारी महिला बहुत जागरूक थे. जिनके साथ दुकान का काम चल रहा है दुकान चला रही है, जिन साथ सिलाई का कार्य चला रही है, तो हर रोजगार से जुड़ी है ऑनलाइन कार्य के बारे में सीखकर. आज मैं जो मेरी जिंदगी है बहुत अच्छी है. मेरे पास गाड़ी है, प्लॉट है, मकान है, सब कुछ है.
10: मैडम का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने ये जरिया दिया और आगे ऐसी और योजनाएं लाती रहें जिससे महिलाएं आगे और बढ़ती रहें.
0: अजय, तो लाइफ में ना पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स थोड़े कम. You're one of them who's actually done both. You've got both, so well done. So so proud of you, and I'm hoping to see you in the finale episode. आपको पता है कि जो top 5 winners होंगे, वो finale episode में आएंगे, and maybe you get an opportunity to meet Mr. Gautam Adani. Yes. Well done.
1: Thank you guys. Thank you so much.
0: Pause, please.
11: और आज वंदे भारतम के मंच पर दिखे कुछ यंग इनोवेटर्स.
12: हम सीवीड और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से रीजनरेटिव पैकेजिंग मटेरियल डेवलप कर रहे हैं टू रिप्लेस कन्वेंशनल प्लास्टिक फिल्म्स एंड इको पेपर विद आवर प्रोप्राइटरी इको कोटिंग,
11: जिनके यूनिक इनोवेशंस ने मेंटोर्स को किया इम्प्रेस.
13: हमने देखा कि इंडियन स्किन केयर मार्केट इज बूमिंग, फिर भी इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं फॉरेन फॉर्मुलेशन या फॉरेन R&D को ज्यादा देखते थे बिकॉज दे ट्रस्टेड देयर मोर. And that is what we wanted to change.
11: जहां young minds ने दिखाया अपना talent, वहीं कुछ जोड़ियों ने भी मिलकर दिखाया अपने innovation का कमाल.
14: We have developed our 3-in-1 made in India respiratory device which can measure lung function of a patient's oxygen saturation, temperature and pulse all in one single device.
11: और Tri Nano की जोड़ी ने साबित किया कि innovation की कोई age limit नहीं होती.
0: मुझे लगता है कि जो एक सपना था, जो सोचा था वंदे भारतम के बारे में श्री गौतम अदानी जी ने, कि इस मंच पर वो सब आए यू नो जहाँ उम्र कहीं बैरियर ना हो, जहाँ तजुर्बा कोई बैरियर ना हो, तो ये आपको देखकर मुझे लगता है कि वो जो सोच है वो सार्थक होती है। वेलकम टू वंदे भारतम।
6: थैंक यू सर। थैंक यू।
0: आप लोग रेडी हैं अपनी पिच के साथ में?
6: बिल्कुल
0: जी। तो आपके चमकने का समय शुरू होता है। आप
6: नमस्ते मेंटर्स, अगर हम देखें तो आपकी गाड़ी के शीशे पे धूल होगी, या टीवी के स्क्रीन पे धूल होगी, या चश्मे पे धूल होगी, तो विजन और क्लैरिटी दोनों कम करती है। लेकिन अगर हम सोलर पैनल पे बात करें धूल मिट्टी की, तो उससे सोलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन का है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसमें वेस्ट हो जाता है। तो उन सबसे जुड़ी हुई इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम ट्राइनानो टेक्नोलॉजी से, मैं हर्ष सेठी,
7: मैं डॉक्टर अंशु डांडिया, ग्रीन केमिस्ट स्पेशली एंड रिसर्च डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ ट्राइनानो टेक्नोलॉजी।
6: हमारी जो टेक्नोलॉजी है 3D क्वांटम क्लैडिंग इज नैनो कोटिंग। सोलर पैनल पे सबसे टॉप सरफेस ग्लास होता है, तो हम ग्लास पे वो करते हैं और एक नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एट सब एटॉमिक लेवल पे अमेजॉन रेन ट्री फॉरेस्ट को मिमिक करता है।
7: ये हमारी जो कोटिंग है वो अभी तक कोई दूसरी कोटिंग इसको क्लेम नहीं कर रही है, और हमारी ये सब ऑल प्रॉपर्टीज वेल एस्टेब्लिश्ड है इन द वेरियस लेबोरेटरीज, वी आर IIT इंक्यूबेटेड एंड MNRE सपोर्टेड।
6: हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कोई भी पैनल, कोई भी ब्रांड, कोई भी मेक, कोई भी टाइप, कोई भी एज, कोई भी लोकेशन एग्नोस्टिक है, सब पे लगाई जा सकती है। अगर नए पैनल है तो हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, और लगे हुए पैनल है तो हम साइट पे जाके करेंगे। और बाकी हमारा आइडिया यही है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सके। हमारी अपेक्षा अडानी ग्रुप से ये है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट किए हैं अडानी ग्रुप के साथ में, अडानी ग्रीन के साथ में किए, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किए वर्टिकल्स में हम कुछ कर सकते हैं। सीमेंट बिजनेस में, ऑयल एंड गैस में हीट एक्सचेंजर के ऊपर ट्यूब पे कोटिंग कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अडानी ग्रुप के साथ मिलके हम बाहर एक्सपोर्ट मार्केट भी इसको कैप्चर कर सकें।
7: आपका सपोर्ट और इंस्पिरेशन हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत होगी।
15: डॉक्टर हर्ष एंड डॉक्टर अंशु, क्या एनर्जी है आपकी, वेरी इन्फेक्शियस एनर्जी, सो अमेजिंग टू हियर।
6: थैंक यू मैम।
15: और आपका रेवेन्यू की जर्नी बताएंगे थोड़ा सा?
6: मैम 2022 में हमने चालू करी, तो फर्स्ट ईयर तो 10,000 करीब ही था। फिर उसके बाद में करीब 1,00,000 रहा, 24-25 में करीब 1 करोड़, और लास्ट ईयर 25-26 में 3 करोड़ रेवेन्यू रहा।
15: वेरी नाइस।
5: दिस यू विल बी रिप्लेसिंग द ग्लास or this will be sprayed on top of the glass?
6: Sir, normally right now whatever glass we are purchasing whether from China or India, we are doing ARC coating, anti-reflective coating. और अभी नया मार्केट में ट्रेंड आया that is called high transmission double coating. पहले ARC की refractive index around 1.35-1.4 रहती थी, अभी high transmission में 1.22 करीब 2.4 है। हमारा आइडिया है कि हम इनको रिप्लेस करें।
5: I can only say since you've requested, we would be happy to as a group work with you. I think we can have a more intense engagement between our manufacturing plant, solar manufacturing, as well as Adani Green, and we can do a trial and see where it reaches.
6: Absolutely.
5: We start with solar, and once it is possible, we will then look at other industries as well, other businesses.
6: Absolutely, sir.
0: I think that's what you were looking. यही उम्मीद करके आए थे कुछ ऐसा हो जाएगा आज?
6: बिल्कुल।
0: करिश्मा,
6: उम्मीद यही थी कि आप लोग बैठेंगे तो सुनेंगे।
5: But I must say your energy is something and not giving up. I think in your life you've never given up and you keep coming back to it. It's just commendable.
6: Thank you sir.
7: Thank you sir.
6: My
7: professional
6: applause for that. Just a number.
7: Just a number. I have started this work in second inning of the life. Previously I was professor in head chemistry department from University of Rajasthan Jaipur. And I am the pioneer worker for green chemistry in India. Wow. So that was very challenging at that time. So challenge लेने की तो आदत पड़ी हुई थी बचपन से।
15: बहुत ही बढ़िया।
0: मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिनाले में पहुँचे। And I'm sure this is just a beginning, not second inning. This is just a beginning.
7: हमारे को ये मौका दिया आप सबने यहाँ पे आने का, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
0: Thank you so much, sir. Wish you all the best.
6: Thank you, sir.
0: So, mentors, please आप लोग scores दे दीजिए। So, mentors, अक्सर हमारी जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि जब माँ बाप होते हैं दे रियली होप कि उनके बच्चों के सपने पूरे हो जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के सपना पूरा करना चाहते हैं। हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्लीज वेलकम हैदराबाद तेलंगाना से आए हमारे अगले इनोवेटर टाइगर एस्टर और उनके को फाउंडर जितेंद्र देसाई। हाय,
16: हाय,
0: वेलकम टू वंदे भारत। तुम
16: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
0: मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी के पापा की ड्रीम थी, आप में से किसके पापा की ड्रीम थी?
16: Mine.
0: आपके क्या ड्रीम थी आपके पापा की?
16: सो माय डैड ऑलवेज लुक्ड एट एनर्जी एफिशिएंसी एंड द प्लैनेट सेफ्टी एज वन ऑफ द प्राइम थिंग्स टू वर्क ऑन।
0: सो व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप यू वर ऑलवेज अवेयर दैट दिस इज व्हाट फादर्स योर फादर।
16: सिंस आई कैन रिमेंबर प्रोबब्ली 11 इयर्स ओल्ड ऑनवर्ड्स।
0: वाओ, सुपर। सो आर यू रेडी विद योर पिच?
16: यस।
0: योर टाइम टू शाइन स्टार्ट्स नाउ।
16: थैंक यू।
14: Hi, good day mentors. My name is Jitendra Desai or JD. We started this firm in 2022 to solve a very big decarbonization problem. ACs, while they cool inside, they are throwing very hot air outside, and that has a multiplying effect and it just gets worse and worse. This technology is more than 120 years old and we are here to disrupt it with something that is made in India, that is climate appropriate and can be scalable for the global south first and then the world. We started this because heat waves are getting more intense, more long, and this has a direct impact on lives and livelihood. And there's a very urgent need for India to solve it. So we brought something that reduces energy bills by more than 80%. Verified by third party. It works on your single phase 5 amp plug points. And these are systems that use normal tap water like your washing machine, but give AC-like cooling. With our systems, you can keep the doors, windows open. It will not impact the cooling at all. That's excellent indoor air quality. And we make a 5-ton unit, but if you need 10 tons, you add 2 units. One unit cools 750 square feet. It can go all the way to cooling airports at 7.5 lakh square feet or more. The temperature we are exhausting is 25. The temperature we are supplying is 15.5. We cool the atmosphere while cooling the space inside as well. That's the beauty of this technology.
16: So we started one, which was the smallest one that we ever made. It kind of looks like the Minion in the cartoons. That's good enough to cool a bedroom in a PM's Avas Yojana kind of a setting. And then we are working on the R&D phases where we can do away with compressors to handle the biggest problem that we have, which is humidity.
14: We are very keen to scale this up. India needs this urgently, and we are raising about 45 crores right now. We would love to have non-dilutive grants to complete our R&D for the platform that solves for hot, dry, humid climates. That's about 5 to 8 crores in R&D that we need. And we'd love to cater to heat stress zones, which is more than 460 districts in India itself, and scale this up massively. And we'd love to then support the Global South. That's our ask. Thank you, Rajiv.
3: Fantastic.
16: Thank you, Rajiv.
3: Can you tell us a little bit about the technology? What is it that's different? And, you know, does it always have to be placed at a window? So how does it work?
16: You know, the technologies that we've had so far, we've had ceiling fans, we've had air coolers, and then we've had air conditioners. So each technology has a limitation. Now, a cooler is able to go give you temperatures 4 degrees C above the wet bulb, whereas the ambient technology allows us to go 3 degrees below the wet bulb in peak summer. So that means you're getting air conditioning like cooling when you need it the most. And the most beneficial part of it is that we're using 5 times less of water than an air cooler. So that gives us that added advantage to go in.
3: Can you give us some idea of you know, how much you'll have achieved in terms of revenues and you know, your unit economics?
14: We have done about 1.2 crores in sales so far. That's translating to about 40 units across India, from Jaipur down south to Vellore. And we found partners and we have identified at least 48 different cities where we are seeing a lot of demand. And that's where I think this fundraise will help us accelerate. And
6: upfront investment for the customer is like a bit higher than the air cooler, is it? Or how do you price it right now?
16: So right now our pricing is at par with the highest efficiency central air cons. So you're talking about your VRFs and your VRV technologies. We are at par with them. The benefit that the customer seeks is that instead of paying 70 rupees for air conditioning, he's now paying 7.5 to 8 rupees.
15: At what humidity level does it work, and at what humidity level would the system fail, would the product fail?
16: Excellent question. So the ambiator as it is right now, the AMB 750 works up to 60 to 62% RH.
15: Oh, wow. That's great, because most of that technology works only till 40 is what I understand.
16: Correct.
15: Because most of the places in India are actually at a very high humidity, what I was studying.
16: Yeah. So we predominantly service hot and dry climates with this product.
15: Okay.
16: And our focus is to work on the humidity problem once we have an acknowledgement from your end.
15: Got it.
5: I must say, two things. I think one, anything to do with climate change, and that's something that you guys are trying to solve, is a billion-dollar idea. Because today, if you see globally, any product which has to do with climate change is going to be successful. So you guys are on the right track. And you know, I've personally seen your product. So I must say that it's a very good product. We'll be happy to support in terms of scaling it up. From whether it's from our real estate business or from our airport business, we'll be more than happy to support in whatever way we can.
0: Thank you. That's a huge compliment.
2: Congratulations, guys. I think you got what you came here for. Congrats.
16: Yeah, thank you so much.
0: Absolutely.
16: Thank
0: you. Well done. I mean, that's a huge thing to happen. I mean, if the Adani Group supports you, and if they're giving you an inroad into things, I think it can't get better from here.
16: It's absolutely wonderful. Thank you so much.
0: Before you leave, let me tell you, if your pitch actually good enough to reach the finale, then probably we'll see you in the top 5 winners. All right, so wishing you all the best and hope to see you in the finale episode.
16: Thank you so much. Yeah. Thank you so much.
0: Thanks a lot. Karan, why did it interest you so much?
5: Personally, I'm a big fan of being carbon neutral. And I think running a business and being environmentally friendly can go in hand in hand, and you can actually do better from a business perspective also. Second, inside story, my wife keeps cribbing me about air conditions. She hates it, so she looks for solutions which can eliminate air conditioning. So she is the one who had told me that this is the one product that we need to look at. So that's how I know about this product.
0: But I think the idea is great.
5: Great.
0: Endorse course.
17: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
0: आज वंदे भारतम के कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं वंदे भारतम के ऐप पर, हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। नई सक्सेस स्टोरी से आपको मिलवाने का सिलसिला चलता रहेगा। वंदे भारतम के साथ फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
14: MyCorp is one of the pioneers of 3D concrete printing technology. And now we are on a mission to democratize this technology.
5: Sports business, we are developing almost 20 million square feet of warehousing and work on your technology.
18: Oh my God!
0: What is happening here?
19: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
20: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
21: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
22: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
23: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
22: अरे मेरे राजा,
24: सबका राजा आग प्योर मसाला।
25: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
26: This isn't just about cars and bikes, this is about how you move.
27: This car makes no sense, yet it makes every sense.
28: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
26: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate

0: हमें तो टीवी पे देख रहे थे, इनकी गाड़ी तो हमारी है, तब देख के हमें पता चला। फिर मैं लड़के को फोन किया, इनकी बेटा गाड़ी तो हमारी है, ऐसे कर दिए नहीं पापा, उसको उसको जिसको मैंने गाड़ी दी है वो मेरा दोस्त है, पर मैं अभी उसे फोन करके बात करता हूँ। फिर उनके बाद पुलिस का कॉल भी आया था, तो उन्होंने उसका नंबर वगैरह सारा कुछ उनको दे दिया।
1: उनकी मम्मी भी यहाँ पर, मनीष जी की मम्मी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब गाड़ी लेकर के गया था कल्याण, तब आपने क्या कहा था?
2: हमने ये कहा था भाई हमारा लड़का तो है नहीं, बोले बात नहीं यारी दोस्ती में, मैं इसे जानता हूँ, हम तो जाने ना हो तू लेके जा रहा हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, फिर बात करिए लड़का ना कि मेरा दोस्त है, मम्मी ये सब गाड़ी चाहिए जरूर, इसे दे दो कोई बीमार हमें उसे गाड़ी दे दी। अब हमें गाड़ी को उसने बताई नहीं है, मेरे
0: कहते ये
2: हमें तो टीवी से पता लगी। हमने फिर लड़का दूर फोन करा कि हम पे तो आपको नंबर मिलो, लड़का ने फिर वहाँ पास करे और जब कह रहा ठीक है मुँह पे तो होगा मैं आपकी गाड़ी सही करवा के दे दूँ।
3: And now NDTV has also spoken to the owner of the building where Kalyan Bhesla ran his gym. Listen in to what he said.
4: दो तीन साल चला है।
5: अच्छा, दो तीन साल से वो इस जिम में काम कर रहे थे।
4: चलाता था, रेंट पे ले रखा था। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई किसी से उसको कभी कोई तू तू में कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। ना हमने कभी उसको कोई गुस्से में देखा, हम तो भाई भाई क्या मेरे तो चाचा ही बोलता है, तो हम ना साथ हुआ कुछ कुछ कोई ऐसी बात यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। हमको ऐसे लगे आदमी वायलेंट हो सकता है कभी हमारे साथ कभी नहीं। अच्छा।
5: लेकिन छोटी मोटी रेंट की डिस्प्यूट थी जिसके बाद सेटलमेंट हो गई।
4: कोई डिस्प्यूट नहीं था, वो तो किराएदार से चलता ही रहता है, तो नहीं एक महीने उसने नहीं दिया, हमने बंद कर दिया नहीं।
5: और तो अभी उसके बाद से कभी भी वो या उनके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है?
4: कोई नहीं आया, कोई नहीं, कोई भी क्यों आएगा जब उसका कोई काम ही नहीं है।
3: NDTV has reached outside the KBT gym which was being run by Kalyan Bhesla just 2 months back. According to the owner of this building, 2 months back there was a small dispute regarding rent, but that got settled since Kalyan had in fact paid the dues of 1 month, and after that this gym has been closed. We are showing you the visuals of the very gym where Kalyan Bhesla, who is right now the accused in the case of the woman biker Sia, who was hit by the car while she was driving at Gurugram's golf course road. Now this is the visual that we are getting you from just outside the gym where Kalyan Bhesla was in fact working at, and this is the gym where he was in fact working for the past 2 years is what the locals have in fact told NDTV. We're trying to show you the visuals from inside the gym as well. This is the gym that was in fact being operated by him. Many people, the locals of this Palwal area, were in fact coming to this very building to in fact get into the gym, but yes, we are showing you the visuals of how this gym was in fact being run by him. 2 years back this gym was closed off, since 2 years he was in fact running the gym, but 2 months back this gym was in fact closed off. And we're also trying to speak to some people who are here. Aapka naam kya hai sir?
6: Ramu. Acha,
5: sir hum dekh rahe hain ki ye gym jo hai band padi hai.
6: Ha, band padi hai.
5: अच्छा, कल्याण बैसल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जिम चला रहे थे।
6: हाँ चला रहे थे, 2 महीने से तो बंद है।
5: अच्छा, तो 2 महीने पहले क्यों बंद किया गया जिम?
6: वो रेंट के ऊपर बंद हुआ था।
5: कोई झगड़ा हुआ था?
6: कोई बात नहीं थी, वैसी थी।
5: कह रहे थे कि रेंट नहीं दे पा रहे थे वो, लेकिन फिर
6: बंद पड़ा, 2 महीने हो गए।
5: अच्छा, तो अब रेंट दिया उन्होंने या बंद करना पड़ा?
6: अभी बंद ही पड़ा है, अभी नहीं है, अभी पता नहीं क्या, मेरे घर वाले देखते हैं ये चीज़।
3: All right, so that was the gym owned by or run by Kalyan Bhesla. Let's take you through this entire incident. It was a Sunday. This lady was on a motorcycle in the middle of Gurugram. There's a very prominent road, golf course road, where she was driving at the time that this man in a car then approaches her. She asks him to keep a distance. The driver, the motorcyclist, she also has said that the driver appeared drunk and continued to chase her. The car then allegedly cut in, hit her bike, you've seen that video, and threw her onto the road, even dragging her several meters. It is then that her co-driver, co-rider, chased the car and confronted the driver. There she is. There he is now chasing up that car and confronting the driver, but then it sped away. And after NDTV has been reporting on this consistently, the Gurugram police earlier today have taken cognizance, registered an FIR. The motorcyclist has said she will also be registering an FIR later today. Let's just listen into what took place, this video that was put out on social media that's now gone viral.
7: आज एक

0: माम के उस लड़के का फोन आया था, मेरा दोस्त आ रहा है उसको गाड़ी दे देना, तो हमने दे दी थी दादा उसको थोड़ी बार।
1: तो आपको मालूम हुआ कि उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ?
0: हाँ जी, आज सवेरे टीवी पे ही देखा है।
1: अच्छा, आपको टीवी से ही केवल जानकारी मिली है?
2: उसने नहीं बताई हमें कैसे होगा गाड़ी,
0: हमें तो टीवी पे देख रहे थे, इनकी गाड़ी तो हमारी है, तब देख के हमें पता चला, फिर मैं लड़के को फोन किया, इनकी बेटे गाड़ी तो हमारी ऐसे ऐसे कर दिए, निक पापा उसको उसको जिसको मैंने गाड़ी दी है वो मेरा दोस्त है, पर मैं अभी उसे फ़ोन करके बात करता हूँ। फिर उनके बाद पुलिस का कॉल भी आया था, तो उन्होंने उसका नंबर वगैरह सारा कुछ उनको दे दिया।
1: उनकी मम्मी भी यहाँ पर, मनीष जी की मम्मी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब गाड़ी लेकर के गया था कल्याण, तब आपने क्या कहा था?
2: हमने ये कहा था भाई हमारा लड़का तो है नहीं, बोले बात कराई लड़का से,
0: उसने कहा दे दो गाड़ी,
2: दे दो कोई मम्मी कोई बात नहीं यार, दोस्ती में मैं इसे जानता हूँ, तो गाड़ी चाहिए जरूर इसे दे दो, कोई बीमार हमें उसे गाड़ी दे दी। अब हमें गाड़ी को उसने बताई नहीं है, मेरे
0: लोटे ये
2: हमें तो टीवी पे पता लगी, हमने फिर लड़का को दोबारा फोन करा कि हम बताओ आप नंबर मिलो, लड़का ने फिर पास करे और जब कह रहा ठीक है मुँह पे तो होगा मैं आपकी गाड़ी सही करवा के दे।
3: Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. Sia, the bike rider, says that the driver then appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her onto the road, dragging her several meters. Her co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, Gurugram police have taken cognizance and registered an FIR. The car owner told NDTV he was not driving and that a friend identified as Kalyan had borrowed the vehicle. Now, meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be filing an FIR and that she does not want to reveal her identity at this point of time. We now play out the entire sequence of that incident which took place on Sunday.
4: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. एंड आज संडे राइड था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से, सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए। सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए, पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है, रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ तुम्हारी गलती है, उसने बोला मेरी गलती नहीं है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया। एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम इन सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे इजीली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता। आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें।
5: दिल्ली के गुड़गांव में कल एक मेजर एक्सीडेंट जो है वो होता है, एक बाइकर लड़की जो है गुड़गांव के गोल्फ कोर्स से जब बाइक राइडिंग करती है तो उस वक्त जो है एक बड़ी गाड़ी जो है वो आके हिट करती है। लड़की पहले जो है बाइक जो चला रही थी वो गाड़ी वाले को उसने इशारा किया रोकने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी वाले ने सबसे पहले आकर उस बाइकर को रोकने की कोशिश की, उस लड़की को जिसका नाम शिवानी शर्मा है, और उसके बाद जो है उसने जब नहीं माना तो उसको हिट करके वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। फिलहाल देखिए मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, ये बाइक जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक जो है वो यहाँ पे तैनात है, और यही जो बाइक है इसका इस्तेमाल जो है कल शिवानी शर्मा कल कर रही थी राइडिंग के दौरान, और जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि उनकी फैमिली का कहना है कि मेजर उनको चोट नहीं आई है, लेकिन स्टिल कल गुड़गांव में जिस तरह से गोल्फ कोर्स पर एक्सीडेंट हुआ शिवानी शर्मा का, ये वो बाइक है जो यहाँ पर उनके रेजिडेंस पर खड़ी है, जिसको इस्तेमाल करते वक्त

0: colleague Kanika has spoken with the victim's father, the biker Sia's father. We will be playing that interview in just moments from now. And that's on your screens right now of that conversation that Kanika has had. Kanika, over to you.
1: देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल गुड़गांव में सिया का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सक्लूसिव बात करने के लिए उनके फादर रोशन चौहान इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सिया के फादर हैं, सिया का पूरा नाम क्या है पहले बताइए।
2: शिवानी चौहान।
1: कल जिस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपको इस बारे में जानकारी कब मिली? आपकी बेटी ने आपको क्या बताया?
2: मेरी बेटी ने मेरे को नहीं बताया, मेरे को भी एक घंटे पहले पता चला जब आप लोग मेरे रेजिडेंस पर आए, तब मेरे को पता चला। और मेरे को आपने जो वीडियो दिखाई वो मैंने देखा, बड़ा असंभव रह गया मैं कि घर पे आके मेरी बेटी ने भी मेरे को नहीं बताया। पर जिस तरह की ये एक्सीडेंट हुआ, नहीं एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये किसी भी बेटी बहन के साथ हो सकता है रोड पे, फिर क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की? उसको देखते हुए तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए।
1: रोशन जी, एक सवाल यही है कि आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार एफआईआर दर्ज तो की गई है, लेकिन आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर?
2: हाँ बिल्कुल, शिकायत तो बिल्कुल दर्ज कराई जाएगी जी।
1: आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बाइकर्स, इवन स्पेशली आपकी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं थी, जिस तरह से कल उसको हिट किया गया, आपको लगता है कि पूरे मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए?
2: जिस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था, जिस प्रकार से वो उनको गाड़ी वाले को बोल रही थी कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, और रोड के ऊपर इतना कोई ट्रैफिक नहीं आता जाता नजर आ रहा था, इसमें तो नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और लेडीज है, हम तो अगर कार भी चला रहे होते हैं, कोई लेडीज चला रही होती है, तो हमें पता है कि भाई उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बना के चलते हैं कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो।
0: कनिका,
2: जिस प्रकार से आगे वो हिट कर रहा है, तो उसकी तो मानसिकता कोई अपराध वाली मानसिकता दर्शाती है ना।
0: कनिका,
1: बेटी 2022 में इलेक्शन भी लड़ चुकी है कालका जी से।
2: हाँ, मेरी बेटी 2022 में कालका जी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ी है।
1: और आप आम आदमी पार्टी में, और आपकी बेटी भी आम आदमी पार्टी।
0: कनिका, इफ यू कैन हियर मी, कैन यू आल्सो आस्क द फादर, कैन यू आल्सो आस्क सिया'स फादर इफ देयर हैज बीन एन एफआईआर व्हिच हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड, बिकॉज़ सिया ऑफ कोर्स डज नॉट वांट टू कम आउट विद हर आइडेंटिटी, बट शी डिड से दैट एफआईआर विल बी फाइल अगेंस्ट द गून। हैज इट बीन फाइल्ड और नॉट?
1: देखिए रहीशा पूछ रही है आपसे लगातार यही सवाल कि गुड़गांव पुलिस ने अपनी तरफ से तो एफआईआर का एक्शन लिया है, तो क्या आप इस पूरे मामले पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और इस पूरे मामले पे लेकर आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो कल्प्रिट है क्या उसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए?
2: अगर गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बख्शने लायक क्राइम नहीं है। एक तो एक्सीडेंट होता है कि अचानक ही हो गया, किसी ने ब्रेक ज़्यादा मार दी, रेस ज़्यादा मार दी, हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, ये एक्सीडेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, ये बख्शने लायक चीज़ है नहीं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाली चीज़ सामने आ गई ना, कि अगर एक आदमी ने गलती से ब्रेक मारी और किसी को हिट हो गया, वो एक्सीडेंट होता है। जब आपकी बाइक चलाते हुए बात चल रही है, आप बाइक चला रहे हो और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कीप डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वो एक मिनट के बाद आके हिट करता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, हिट एंड रन है।
1: ओके, एक अंतिम सवाल है मेरा ये कि सिया खुद कब जाएंगी अपना पूरा मामला दर्ज करवाने?
2: बिल्कुल हम जाएंगे अभी, अब मेरी नॉलेज में आया तो बिल्कुल जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे?
1: आपके साथ जाएंगी अभी?
2: हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, कोई ऐसी बात थोड़ी, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल ऐसे लोगों को अगर हम बख्शते हैं तो कल किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों। ये तो मेरी बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई, जिस प्रकार से वो रोड के ऊपर घसीट रही थी, उसका मर्डर भी हो सकता था, गाड़ी के नीचे भी आ सकती थी, हाथ पैर भी खराब हो सकते थे, इसका जिम्मेदार उसने मेरे को बताया नहीं। ऑलरेडी उसके ऊपर चोट
1: इंजरी हुई है,
2: चोट तो है उसने, सुबह मैंने देखा था तो मेरे को ऐसा लगा भाई जिम में एक्सरसाइज करके कुछ मांसपेशियां आड़ रही होंगी, पर इसलिए वो अभी
1: ज्यादा चोट लगी है या थोड़ी चोट लगी है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन
2: है, वो अगर आएंगे तो मैं देख के बता पाऊंगा।
1: अभी वो घर पे मौजूद नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं?
2: हाँ मेरी मुलाकात सवेरे हुई थी, जब मॉर्निंग में तो मैं अपना मीटिंग में चला गया था, तो उस टाइम मेरे को लगा था कि शायद बॉडी में कुछ

0: लड़खड़ा रहे हैं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है।
1: देखिए सिया के जो फादर हैं वो इस वक्त बता रहे थे कि इस तरह से उनको चोटें जो हैं वो बहुत कम लगी हैं फिलहाल, लेकिन चोट लगी है, लेकिन फैमिली कॉन्टिन्यूसली यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर वो FIR दर्ज करवाएंगे। उनके फादर ने खुद बोला है कि हम खुद जाएंगे इस मामले को लेकर, लेकिन जो फैमिली से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसमें यही है कि जो उनके लॉयर हैं अभिषेक, वो फिलहाल अभी गुड़गांव जा रहे हैं FIR को लॉन्च करने के लिए, लेकिन फैमिली कॉन्टिन्यूसली यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जैसे जिसने हिट किया है उसको तुरंत गुड़गांव पुलिस जो है वो अरेस्ट करे।
2: राइट कनिका, बट व्हाट वी आर लर्निंग, लाइक सिया'स फादर आल्सो सेड दैट अ फॉर्मल FIR हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय सिया येट, and she also did not want to tell her father that what happened with her. But we also learning that the police has filed a suo motu FIR in this case. But we're still awaiting for a formal FIR by Sia. The father has also demanded attempt to murder charge. Kanika.
1: Well, absolutely right. On the other side, the Gurgaon police have already lodged the FIR, slow moto FIR regarding this case. Now, the family is also trying to register the FIR in Gurgaon police. As per our sources, family also sent their lawyer to Gurgaon Sector 56 police station to lodge the FIR. And continuously now, the family and especially Sia's father is continuously demanding to investigate this matter, and also he is also demanding the same thing that the person should got punished,
2: right,
1: because continuously this thing will be right, now viral on social media.
2: Right, we just
1: so
2: want
1: now
2: to,
1: the whole family is demanding that.
2: Right, we just want to break that news for all our viewers. The Gurugram police has right now filed a suo motu FIR in this case. The Gurugram police goes on to say that the golf course road rage case upon the victim, remember Sia, the biker, has not filed a formal complaint yet. And the Gurugram police has taken a suo motu cognizance. Take a listen to what the police officials have said on filing the suo motu FIR in this road rage case. Take a look.
3: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
4: पीड़ित की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि
2: All right, sir. So that's the statement by the police officials saying that they, after this video which came to them, there's been a suo motu FIR which has been filed against Kalyan Besla. He's at Haryana Goon who is still missing. The Sia's father has also spoken to NDTV and he says that they have still not filed a formal complaint. Sia is not at home right now, but he has said that a suo motu cognizance FIR has been filed. I want to go back to Kanika for more on this. Kanika, do you have any other information? सिया'स फादर ने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें कहा ये अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज है जिस तरीके से वो गिरी थी, बट कोई फॉर्मल FIR सिया ने फाइल नहीं किया है अभी तक। इस एक सो मोटो कॉग्निसेंस FIR है जो गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक फाइल की है।
1: बिल्कुल सही बात है, अभी तक FIR जो है वो सिया की तरफ से दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर गुड़गांव पुलिस ने स्लो मोटो FIR जो है वो दर्ज की है, लेकिन लगातार फैमिली जो है वो यही कह रही है कि ये डायरेक्टली जो है हिट एंड रन का केस था, इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरी फैमिली में कई लोगों से सुबह से लगातार बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, जिनका ये कहना था कि हम इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करवाएंगे, बल्कि अब से कुछ देर पहले ऑफ रिकॉर्ड सिया से मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि वो FIR ज़रूर इस मामले में लॉन्च करवाएंगी। और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, उन्होंने अपने वकील को भी इस चीज के लिए जो है वकील से बोला है कि इस पूरे मामले पे FIR होनी चाहिए, लेकिन देखिए तमाम जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है बात चल रही है। सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप भाई हैं सिया के। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पर आप क्या डिमांड करते हैं?
5: देखिए जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
1: ये हाँ
5: जी उसने
1: क्या बताया, उन्होंने आपको कॉल कर,
5: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक।
1: हाँ।
5: फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ, और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, GoPro में वीडियो बना रही थी, और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो चार लोग थे उस गाड़ी में और वो ड्रंक थे सारे के सारे, और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
1: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेस कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
5: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी। वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे। और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट, अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनको सुनते बात पूरी। अब वही है, वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा और डिश करके भाग गए थे। बस ये
1: आपकी जब बहन से पहली बार जब बात हुई इस एक्सीडेंट के बाद, किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया और वो कितने बजे घर पहुंची? क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो खुद आई थी, उनके फ्रेंड्स उनको लेके आए थे, कितने बजे वो घर पहुंची थी?
5: एक्सीडेंट के बाद उनके जितने बाइक का फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको उठाया आराम से, पहले उनकी मेडिकल केयर करी पूरी, और फिर उनका ब्रेक फेल हो गई थी बाइक की, हैंडल काम नहीं कर रहा था, तो एक फ्रेंड उनकी बाइक चला के आया, वो किसी के पीछे बैठ कर आई थी यहाँ तक घर,
1: किसी के पीछे बैठ के आई थी। अच्छा, एक और सवाल है कि क्योंकि सिया को इस तरह से हिट किया गया, अब इस पूरे मामले को लेकर सिया अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने कब जाएंगी, और आप में से क्या उनके फादर या भाई, आप लोग भी उनके साथ जाएंगे, आप लोग कब जाएंगे?
5: स्टेटमेंट अभी हमारा लॉयर गए थे गुड़गांव ही, और उन्होंने वहाँ के SHO वगैरह से बात कर कर आए हैं वो, और पूरी FIR की डिटेल्स वगैरह निकाल कर लाए हैं, और अभी शिवानी खुद ही पूरा बयान देगी और हम सारे उनके साथ हैं।
1: एक सवाल मेरा और है कि शिवानी को जिस तरह से हिट किया गया, कितनी चोट आई है, क्या वो ज़्यादा इंजर्ड हुई हैं या उनको कम चोट आई है? अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ को बता सके कितनी चोट आई है?
5: थैंक गॉड उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बिकॉज उसने पूरे गियर्स पहन रखे थे, बाइकिंग गियर्स, और गियर्स पहनने के बाद भी उसको थोड़ी नॉर्मल घिसरन टाइप सी चोट आई है, और उसे नॉर्मल बॉडी पेन है और नॉर्मल रिकवरी हो रही है उसकी।
1: आप लोगों की मुलाकात सुबह से हुई है? क्योंकि सुबह से मैं
5: आपके साथ हूँ सुबह से।
1: हाँ, वो घर पे मौजूद है इस वक्त?
5: नहीं, अभी घर पे मौजूद नहीं है, वो भी काम से गई रखी है।
1: अच्छा, ओके, लेकिन आप कंटिन्यूसली उनके संपर्क में हैं सुबह से? ठीक है, तो इस पूरे मामले पे अगेन मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप क्या डिमांड करते हैं इस पूरे मामले में, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए?
5: इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होना चाहिए, एक तो हम सबसे पहले अरेस्ट चाहते हैं उनका, और अपोलॉजी चाहते हैं, और हम चाहते हैं गुड़गांव पुलिस से कि उनका एटलीस्ट अच्छे इतना वो अरेस्ट करे कि आगे किसी के साथ भी ऐसे लड़की ना लड़के के साथ ऐसे करे, और ड्रंक एंड ड्राइव तो खास कर ना करे, और गलती से भी अगर एक्सीडेंट होता है तो वो रुके, कम से कम हिट एंड रन ना करे, और हम चाहेंगे बस यही चाहेंगे।
1: आप लोग परेशान भी इस मामले?
5: हाँ जी, बहुत।
1: ओके, देखिए उनके जो सिया हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस वक्त में, उनके रियल ब्रदर जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ थे कुछ देर पहले, उनके फादर जो हैं उन्होंने NDTV से एक्सक्लूसिव बात की थी। तो लगातार जो है पूरी फैमिली यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फिलहाल देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लॉयर को जो है गुड़गांव भेजा गया है इस पूरे मामले पे FIR दर्ज कराने के लिए, और लगातार फैमिली जो है वो लॉयर से कॉन्टैक्ट में है, और इस पूरे मामले में जिस तरह से लॉयर गाइड करेंगे उसके बाद ही फैमिली है वो आगे एक्शन लेगी।
2: राइट, सो जस्ट टू रैप अप एंड टेल आवर व्यूअर्स दैट NDTV हैज स्पोकन विद सिया'स फादर एंड इवन ब्रदर, एंड द फादर हैज आल्सो सेड दैट दे विल बी फाइलिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट। द सिया'स ब्रदर इन दैट चैट विद NDTV हैज सेड दैट देयर वर 4 ड्रंक मेन हु वर इनसाइड दैट कार हु चेज्ड हिज सिस्टर सिया इन दैट अर्ली मॉर्निंग ड्राइव ऑन संडे, एंड दे ट्राइड, दे वर आल्सो पासिंग सम अब्यूसिव लैंग्वेजेस एंड स्लर्स एट सिया। टेक अ लिसन टू व्हाट सिया'स फादर सेड। Exactly.
1: आप सिया के फादर हैं, सिया का पूरा नाम क्या है पहले बताइए?
6: शिवानी चौहान।
1: जिस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपको इस बारे में जानकारी कब मिली? आपकी बेटी ने आपको क्या बताया?
6: मेरी बेटी ने मेरे को नहीं बताया, मेरे को भी एक घंटे पहले पता चला जब आप लोग मेरे रेजिडेंस पर आए, तब मेरे को पता चला, और मेरे को आपने जो वीडियो दिखाई वो मैंने देखा, बड़ा असंभव रह गया मैं,
0: आके घर पे आके मेरी बेटी ने भी मेरे को नहीं बताया, पर जिस तरह की ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये किसी भी बेटी बहन के साथ हो सकता है रोड पे, फिर क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की, उसको देखते हुए तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए।
1: रोशन जी, एक सवाल यही है कि आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार FIR दर्ज तो की गई है, लेकिन आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर?
0: हाँ बिल्कुल, शिकायत तो बिल्कुल दर्ज कराई जाएगी जी।
1: आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बाइकर्स, इवन स्पेशली आपकी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं थी, जिस तरह से कल उसको हिट किया गया, आपको लगता है कि पूरे मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए?
0: जिस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था, जिस प्रकार से वो उनको गाड़ी वाले को बोल रही थी कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, और रोड के ऊपर इतना कोई ट्रैफिक नहीं आता जाता नजर आ रहा था, इसमें तो नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और लेडीज है, हम तो अगर कार भी चला रहे होते हैं, कोई लेडीज चला रही होती है, तो हमें पता है कि भाई उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बना के चलते हैं कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, और जिस प्रकार से आगे वो हिट कर रहा है तो उसकी तो मानसिकता कोई अपराध वाली मानसिकता दर्शाती है ना।
1: क्या आपकी बेटी 2022 में इलेक्शन भी लड़ चुकी है कालका जी से?
0: हाँ, मेरी बेटी 2022 में कालका जी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ी है।
1: और आम आदमी पार्टी में, और आपकी बेटी भी आम आदमी पार्टी?
0: हाँ हाँ जी, आम आदमी पार्टी से बिटिया है।
2: All right, Kanika, you're still there outside Sia's residence. Is there any update on where is Sia right now? Because she's not publicly come out and spoken about her identity yet. While you did speak with her father and the brother alleges that there were four drunk men inside the car, and the father says that there needs to be a case of attempt to murder charge. Kanika.
1: Well, Sia is not present at his residence, her residence. Even I spoke to her mother and brother and father regarding this issue. They are continuously saying that Sia is not at home. She is with his friend's residence, but right now I am at her location currently. And even we spoke to the family regarding this issue. Now the family is also demanding the full flash investigation regarding this case, but currently for the update regarding this issue, Sia, jo ki Sia Shivani Chauhan is not present at her residence.
2: Tracking this very closely, we're waiting for the formal complaint filed by Sia. Like her, Sia's brother also said that they will be filing that complaint in by the end of evening today. On that, we'll be slipping into a very short break. Come right back. Coming up next, Nationwide at 6.

0: Hello, good evening and welcome to Nationwide at 6 on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, since morning we have been tracking a story. And why is this story important? Because it tells you how unsafe not only the streets of Gurgaon are, but also the toxic misogyny that a man, fragile ego, could not take a woman rider overtaking him, resulted in him almost attempting to crush her down. This is what happened in the daylight on Sunday morning in Gurugram. She was chased, harassed, and then later hit by this vehicle. When his friends tried to confront this man, the thug Kalyan Besla, who has now been identified, he is on the run as the Gurugram police have registered a suo motu case against him. We'll get you the latest on this as he chased and harassed that woman biker, resulting to injuries to this young woman. And then we'll also, in fact, get you the other story that we'll be tracking here on Nationwide. India once again refuses to accept the Asia Cup trophy from Pakistan. A redux. The women this time, the women in blue, show Pakistan a complete snub as far as the Asia Cup trophy is concerned. Mr. Mohsin Naqvi, at this moment, owes two trophies to India, which he is holding very dearly with himself. We'll get you those stories as well. But let's begin with the breaking story, the top news at this moment. The biker's family, the woman who was, in fact, riding this bike, also was hit by this car when the car owner, who was trying to, in fact, stop this woman, chase her, harass her. And when she overtook him, after telling him to keep his distance, this is how he responded. Now, the woman's family has spoken to NDTV. They have said, and like we've been speaking about, this is an intentional, in fact, attempt to hurt this woman. And that is why, you know, charges, or serious charges of attempt to murder should be, of trying to cause grievous harm, should be put on this man, Kalyan Besla, who is on the run at this moment. The family has spoken to NDTV. Her father has also demanded attempt to murder charges to be put against this thug. Listen it.
1: आप सिया के फादर हैं, सिया का पूरा नाम क्या है पहले बताइए।
2: शिवानी चौहान।
1: शिवानी चौहान, कल जिस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपको इस बारे में जानकारी कब मिली? आपकी बेटी ने आपको क्या बताया?
2: मेरी बेटी ने मेरे को नहीं बताया, मेरे को भी एक घंटे पहले पता चला जब आप लोग मेरे रेजिडेंस पर आए हैं, तब मेरे को पता चला और मेरे को आपने जो वीडियो दिखाई वो मैंने देखा, बड़ा असंभव रह गया मैं कि घर पे आके मेरी बेटी ने भी मेरे को नहीं बताया। पर जिस तरह की ये एक्सीडेंट हुआ, नहीं एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये किसी भी बेटी बहन के साथ हो सकता है रोड पर, फिर क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की, उसको देखते हुए तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए।
1: एक सवाल यही है कि आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार एफआईआर दर्ज तो की गई है, लेकिन आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर?
2: हाँ बिल्कुल, शिकायत तो बिल्कुल दर्ज कराई जाएगी जी।
1: आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बाइकर्स, इवन स्पेशली आपकी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं थी, जिस तरह से कल उसको हिट किया गया, आपको लगता है कि पूरे मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए?
2: जिस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था, जिस प्रकार से वो उनको गाड़ी वाले को बोल रही थी कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, और रोड के ऊपर इतना कोई ट्रैफिक नहीं आता जाता नजर आ रहा था, इसमें तो नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और लेडीज है, हम तो अगर कार भी चला रहे होते हैं, कोई लेडीज चला रही होती है, तो हमें पता है कि भाई उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बना के चलते हैं कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और जिस प्रकार से आगे वो हिट कर रहा है, तो उसकी तो मानसिकता कोई अपराध वाली मानसिकता दर्शाती है ना।
1: क्या आपकी बेटी 2022 में इलेक्शन भी लड़ चुकी है कालका जी से?
2: हाँ, मेरी बेटी 2022 में कालका जी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ी है।
1: और आम आदमी पार्टी में, और आपकी बेटी भी आम आदमी पार्टी?
2: हाँ हाँ जी, आम आदमी पार्टी से।
1: कि गुड़गांव पुलिस ने अपनी तरफ से तो एफआईआर का एक्शन लिया है, तो क्या आप इस पूरे मामले पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और इस पूरे मामले पे लेकर आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो कल्प्रिट है क्या उसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए?
2: अगर गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। और कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बख्शने लायक क्राइम नहीं है। एक तो एक्सीडेंट होता है कि अचानक ही हो गया, किसी ने ब्रेक ज़्यादा मार दी, रेस ज़्यादा मार दी, हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, ये एक्सीडेंट करने की कोशिश करी जा रही थी। ये बख्शने लायक चीज़ है नहीं। ये अटैम्प्ट टू मर्डर वाली चीज़ सामने आ गई ना, कि अगर एक आदमी ने गलती से ब्रेक मारी और किसी को हिट हो गया, वो एक्सीडेंट होता है। जब आपकी बाइक चलाते हुए बात चल रही है, आप बाइक चला रहे हो और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वो एक मिनट के बाद आके हिट करता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, हिट एंड रन है।
1: ओके, एक अंतिम सवाल है मेरा ये कि सिया खुद कब जाएंगी अपना पूरा मामला दर्ज करवाने?
2: बिल्कुल हम जाएंगे अभी, अब मेरी नॉलेज में आया तो बिल्कुल जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे?
1: आपके साथ जाएंगी अभी?
2: हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, कोई ऐसी बात थोड़ी, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल ऐसे लोगों को अगर हम बख्शते हैं तो कल किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों। ये तो मेरी बेटी को ज़्यादा चोट नहीं आई, जिस प्रकार से वो रोड के ऊपर घसीट रही थी, उसका मर्डर भी हो सकता था, गाड़ी के नीचे भी आ सकती थी, हाथ पैर भी खराब हो सकते थे, इसका जिम्मेदार उसने मेरे को बताया नहीं। ऑलरेडी उसके ऊपर चोट
1: इंजरी हुई है,
2: चोट तो है उसने, सुबह मैंने देखा था तो मेरे को ऐसा लगा भाई जिम में एक्सरसाइज करके कुछ मांसपेशियां आड़ रही होंगी, पर इसलिए वो अभी
1: चोट लगी है या थोड़ी चोट लगी है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन
2: है। वो अगर आएंगे तो मैं देख के बता पाऊंगा।
1: अभी वो घर पे मौजूद नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं?
2: हाँ मेरी मुलाकात सवेरे हुई थी, जब मॉर्निंग में तो मैं अपना मीटिंग में चला गया था, तो उस टाइम मेरे को लगा था कि शायद बॉडी में कुछ लड़खड़ा रहे हैं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है।
1: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेज कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
3: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी, वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे, और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था। एक होता है एक्सीडेंट, अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनको सुनते बात पूरी, अब वही है वो रुके भी नहीं, फिर हम हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा और डिश करके भाग गए थे बस ये।
1: आपकी जब बहन से पहली बात जब बात हुई इस एक्सीडेंट के बाद, किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया और वो कितने बजे घर पहुंची? क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो खुद आई थी, उनके फ्रेंड्स उनको लेके आए थे, कितने बजे वो घर पहुंची थी?
3: एक्सीडेंट के बाद उनके जितने बाइक का फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको उठाया आराम से, पहले उनकी मेडिकल केयर करी पूरी, और फिर उनका ब्रेक फेल हो गई थी बाइक की, हैंडल काम नहीं कर रहा था, तो एक फ्रेंड उनकी बाइक चला के आए, वो किसी के पीछे बैठ कर आए थे यहाँ तक।
1: शिवानी को जिस तरह से हिट किया गया, कितनी चोट आई है, क्या वो ज़्यादा इंजर्ड हुई हैं या उनको कम चोट आई है? अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ को बता सके कितनी चोट आई हो?
3: थैंक गॉड उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बिकॉज उसने पूरे गियर्स पहन रखे थे, बाइकिंग गियर्स, और गियर्स पहनने के बाद भी उसको थोड़ी नॉर्मल घिसटन टाइप सी चोट आई है, और उसे नॉर्मल बॉडी पेन है और नॉर्मल रिकवरी हो रही है उसकी।
0: That's the family demanding strictest of the punishment. Thankfully, that she has not suffered serious injuries. She is going to, in fact, her lawyers are in touch with the Gurugram police. But breaking news coming in at this moment, FIR has been registered in the Gurugram hit and run case, deliberate hit and run case. Now the Gurugram police has registered an FIR. This is what the details which are coming in at this moment. It has been registered and NDTV has accessed the FIR copy in this case. In fact, the FIR mentions that the car involved is a white Sias bearing registration number HR30Y4949. The incident

0: So many programs that I set for women for them to learn how to break in an emergency, how to train themselves, how to be prepared to, you know, manage a sudden maneuver to the bike if in case you're touched or hit by the back. Things like this are very difficult for some people to digest. And this is a social issue. We are trying to normalize women on bikes. It's taking us a lot of time because it's really hard to break stereotypes. And I also heard that Shivani's father got to know about the accident later. Shivani was not probably comfortable to tell her father about it. Parents, family, we all need to be slightly open-minded about our interests, about things that we really want to do.
1: Yes.
0: Even if it's riding a motorcycle. Riding a motorcycle is not associated to the male gender. There is no such rule.
1: Absolutely.
0: There are bikes that a man can ride and a woman can ride. We need to first start being comfortable talking about our problems at home. Our
1: Absolutely.
0: Parents need to know where we are, what we are doing. Are we safe? Are we not safe? And Ankit, I'm so sorry to tell you, I hear these kind of incidents faced by women bikers a lot. I recently lost a friend of mine because of the negligence of a heavy vehicle out on the road in Chhattisgarh.
1: Right.
0: I lost a friend. I have lost two other friends because there was a truck coming down from the opposite side where he's not supposed to be coming, and the bikers didn't see them coming and they just went head on into the truck and lost their lives.
1: Right.
0: On two wheels, we are anyway so exposed and vulnerable to the surroundings outside that it's difficult for us to, you know, even judge how a 1500 kilo vehicle is running towards you,
1: Absolutely.
0: Trying to intentionally crash into you.
1: I totally agree with you. Indian roads are not the safest of the roads. We have seen, in fact, the quality and the data which will tell you that it is one of the most dangerous places to be on. And especially when you are a woman, like you said, the mindset has to change. And very well pointed out that the father and the family at least, you know, have this conversation. Riders are riders. Don't differentiate women and men. It's just a person on a machine. They need to know how to handle the machine. Everything else should be left. Whether it's a man or a woman, everybody should be free to, in fact, exercise that choice. It has to be normalized. Thank you so much, Tanisha, for pointing that out and speaking to us on NDTV. I want to, in fact, very quickly also, ladies and gentlemen, go across and put for you, the other side of this story. The car owner has also spoken to NDTV, denying he was behind the wheels. Apparently, this person who owns this car is with the Indian Army at this moment, posted in Assam. He says his friend borrowed his car and identified the friend, as now the world knows him, as Kalyan Baisla. We spoke to his parents. Listen in.
2: Manish, kya ye gaadi aapki hi hai?
3: Ji, ma'am, meri gaadi hai.
2: ये जो चला रहे थे वो कौन है?
3: ये मैम मेरे साथ का बंदा, मतलब दूसरे गांव का है।
2: आप जानते हैं इसको? मतलब
3: हाँ, जानता हूँ मैम।
2: आप इनके बारे में क्या ज्यादा जानकारी दे पाएंगे?
3: मैं इनका मोबाइल नंबर दे सकता हूँ और घर का, गांव का नाम बता सकता हूँ मैम। मैम ये साथ का बंदा था, गाड़ी कहीं जाने के लिए मेरे से मांगी थी तो मैंने घर से दिला दी थी मैम।
2: और कितने वक्त पहले आपने गाड़ी दी थी इनको?
3: दो दिन पहले दी थी मैंने।
2: ये जो घटनाक्रम सामने आया है और इसके बारे में आपको भी जानकारी होगी, इस पर क्या कहेंगे आप?
3: मैम ये तो गलत है, मतलब कि ऐसे टक्कर मारना गलत है। उसका दूसरा विश्वास भी टूटता, हम तो किसी को विश्वास करके गाड़ी दे दिया। मैं तो खुद मैं आर्मी में हूँ, मतलब हम तो ऐसे काम करते नहीं, तो मैं दे दिया भाई बंदी में। और कोई प्रॉब्लम मेरे पर तो काफी कॉल आ रही है, कोई गाली दे रहा, कोई क्या कर रहा, मेरी तो कोई गलती नहीं है, बस ये गाड़ी दी थी।
2: क्योंकि गाड़ी का नंबर जो है, अब वो क्योंकि तस्वीरों में सामने आया है और इसे जारी किया गया है, तो लोग यही समझ रहे होंगे कि ये गाड़ी आप ही की है और आप भी शायद चला रहे होंगे या उस वक्त आप भी मौजूद होंगे। इसीलिए उस तस्वीर को हम साफ करना चाहते हैं कि आप उस वक्त मौजूद गाड़ी में नहीं थे। यही आप कह रहे हैं कि आपने इनको गाड़ी दी थी?
3: मैं आसाम में ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी हूँ।
2: अच्छा,
4: कब लेकर गए थे?
5: जी शनिवार को ले गए थे, 10 बजे के आसपास सुबह। मांग के उस लड़के का फोन आया था, मेरा दोस्त आ रहा है, उसको गाड़ी दे देना, तो हमने दे दी थी शनिवार।
4: तो आपको मालूम हुआ कि उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ?
5: हाँ जी, आज सुबह टीवी पे ही देखा है।
4: अच्छा, आपको टीवी से ही केवल जानकारी मिली है?
6: उसने नहीं बताई हमें कैसे हुआ गाड़ी।
5: हमें तो टीवी पे देख रहे थे, इनकी गाड़ी तो हमारी है, तब देख के हमें पता चला। फिर मैं लड़के को फोन किया, इनकी बेटा गाड़ी तो हमारी है, ऐसे कर दिए पापा उसको, जिसको मैंने

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: if a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
1: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharatam. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे आज के मेंटर्स को. प्लीज वेलकम आशुतोष बलानी, मिस्टर राजीव कालम्बी, आरती गिल, मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति, द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी. तो वेलकम टू वंदे भारतम. शुरू करते हैं. घर बनाना हम सबका सपना होता है. कुछ लोग ये सपना बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग काफ़ी देर के बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद पूरा करते हैं. टेक्नोलॉजी हर जगह पे, हर क्षेत्र में आजकल, घर के कंस्ट्रक्शन की दुनिया में क्यों नहीं है, ये सवाल हमारे इनोवेटर के दिमाग में आया. तो जोरदार तालियां माई कॉप की इनोवेटर अंकिता सिन्हा, शशांक शेखर और ऋषभ माथुर के लिए. वेलकम वंदे भारतम के मंच पर. पिच का टाइम आपके पास में जो है वो 3 मिनट का है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
1: हेलो एवरीवन, हमारे और आपके लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है घर, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड व्हाट नॉट. 20,000 फीट की हाइट पर सीमा पर तैनात एक सैनिक के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है देश की प्रोटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी. इमेजिन दिस, हाई ऑल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर, वेरी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर आपको करना है कंस्ट्रक्शन. ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्लो नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है. हमने इस प्रॉब्लम को काफ़ी बारीकी से समझा, सॉल्व किया और देश को दिया उसका पहला 3D प्रिंटेड इम्पैक्ट एंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट बंकर. यह बंकर सुपीरियर क्वालिटी के हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
3: जय हो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: The world is between what was and what will be. NDTV World Summit. A world between orders.

0: देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ,
1: घटना में मर सकती थी वो, आपको भी
0: नहीं सर, सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत,
1: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
0: सर सर सर सर सर सर सर
1: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
0: सर एक्चुअली सर
1: आंसर नहीं भी कर रहे हैं
0: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
1: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते ये?
0: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर।
1: कौन सा
0: और एक, एक,
1: एक, संपर्क नहीं
0: एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर मेरा, एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हूँ इसमें,
1: आपकी कल्याण
0: मेरी मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में, सुनो सुनो सर सुनो सर सर सुनो तो सही सर, मैं
1: इतना जो
0: मैं सर सुनो सर मेरी सुन दो एक सर, मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है, एक्चुअली मेरा आज मंडे था काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
1: नहीं अरे ठीक है नवीन जी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं
0: उसके गांव में गया हूँ, गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है।
1: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान
0: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकल रहे हैं ठीक निकल रहे हैं?
1: नहीं नहीं जो भी होता है
0: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ वो तो एक वो तो सुनो सर वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो

0: बाद
1: लेकिन
0: उसके
1: सर
0: बाद सर उसके
1: मैं
0: बाद
1: आपको
0: सुनो उसके बाद
1: नवीन
0: सुनो
1: जी,
0: उसने
1: नवीन
0: उस
1: जी
0: लड़के
1: क्या
0: ने
1: आपको
0: पहले भी
1: मेरी बात
0: उसको बोला कि
1: क्या
0: तुम
1: आपको पता है
0: आप सेफ्टी से चलाओ।
1: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, चार
0: सर
1: अलग
0: सर
1: अलग वीडियो है सामने,
0: मैंने
1: चार
0: मैंने वो
1: अलग
0: मैंने
1: वीडियो
0: वो मैंने वो मैंने वो सर मैंने वो
1: साफ
0: सारी
1: साफ
0: वीडियो
1: साबित
0: देखी है
1: होता है कि
0: सर।
1: क्या हुआ है।
0: वो लड़की सर सुन,
1: उससे
0: मैं तो
1: पहले
0: उसी
1: पहले
0: की
1: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
0: नहीं सर नहीं सर नहीं सर इनका क्या बस, खाली वो बार बार इसको पिंच कर रहे थे, इनसे आग निकल जाते थे बार बार। ये सारे ये 28 लड़के 28-30 जने थे
1: सर ये
0: टोटल
1: पूरा
0: गाइड
1: क्लियर
0: अंदर
1: है
0: बैठे।
1: सर,
0: सर ये तो आपने
1: सीधी
0: एक
1: आपकी
0: क्लिप देख ली
1: आपकी
0: सर।
1: एक तरफ
0: सर
1: आप
0: ये
1: बोल रहे हैं
0: आपने
1: कि ये
0: सर सर
1: नादान
0: सर सर
1: है,
0: प्लीज
1: छोटी
0: सर
1: सी गलती हुई है,
0: ये आपने
1: और अब
0: ये
1: आप
0: आपने
1: बोल रहे
0: सर
1: हैं कि ये डॉक्टर है गलत है,
0: ये
1: ऐसा
0: सर
1: कुछ
0: ये
1: नहीं हुआ
0: सर
1: है।
0: ये क्लिप ये सर आपने क्लिप देख ली है। उसने बस खाली एक गलती करी कि गाड़ी स्पीड में चलाई, जो ये राइटर सारे गलती कर रहे थे स्पीड में चला के।
1: आप अब देश को झूठ बोलना चाहते हैं कि ये अनइंटेंशनल था,
0: सर
1: ये
0: सर
1: इंटेंडेड
0: सर
1: नहीं
0: सर
1: था।
0: मैं तो सर
1: पूरा
0: न्यूज
1: कैमरे
0: और
1: पे है
0: मैं सर वीडियो देख के ही आपको बता रहा हूँ सर।
1: लड़की के जो माँ बाप हैं वो अब अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगाना चाहते
0: नहीं
1: हैं, जो
0: सर
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल
0: सर
1: सही है। ये तो
0: लड़की के
1: अटेम्प्ट टू मर्डर
0: लड़की
1: ही
0: के
1: था।
0: साथ सर लड़की के साथ पूरी सिंपैथी है मेरी है। मैं कहूँ भगवान उसको जल्दी ठीक करे, कोई इशू नहीं है
1: सर वो
0: ठीक है।
1: सर
0: पर ये
1: उसका
0: सर
1: कोई
0: सर
1: उसका
0: ये
1: कोई
0: जो
1: उसका कोई
0: सर ये
1: पॉइंट
0: जो
1: नहीं है
0: राइडर है
1: सर।
0: ना सर मेरी बात
1: बात
0: सुनो सर,
1: निकल चुकी है, अब तो कल्याण को सामने आना पड़ेगा, पुलिस के सामने आना
0: सर
1: पड़ेगा।
0: ये तो मैं तो पुलिस की कमी बताता हूँ, जो राइडरों को रोड पे निकालते हैं
1: सर।
0: उसकी कमी है,
1: एक बात
0: नाकामी
1: बताइए,
0: उसकी
1: एक एक एक स्ट्रेट बात
0: सर
1: बताइए, ये जो कल्याण जो आपके भाई हैं या कजन हैं जो भी हैं, आपके क्लाइंट भी
0: सर
1: हैं,
0: सर जो भी है
1: ये
0: सर
1: तो
0: काम के नाते साथ सर।
1: ये तो सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं, ये तो जिम ओन कर चुके हैं,
0: सर
1: इतना
0: सर सर सर
1: शिव भक्ति करते हैं, और सोशल
0: स्पोर्ट्स
1: मीडिया
0: में
1: पर
0: सर
1: म्यूजिकल म्यूजिक
0: कबड्डी
1: वीडियोस
0: कबड्डी
1: बनाते हैं
0: कबड्डी कबड्डी का सर इंटरनेशनल और
1: सर, जो
0: नेशनल
1: भी है
0: दोनों
1: सर,
0: प्लेयर का सर।
1: सर वो तो सब सब सब करते हैं, वो कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कायर है फिर।
0: सर सर सर सर
1: ये सब
0: कायर
1: करने
0: तो
1: का
0: सर
1: क्या बात
0: हम
1: है, क्या फायदा है कबड्डी खेलना, इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी खेलना, शिव भक्ति करना यूट्यूब पर,
0: जब तक
1: इसका सब क्या फायदा है अगर पुलिस
0: उसकी
1: के सामने
0: बात
1: नहीं आ सकते हो तो।
0: आपने सर एक पक्ष सुन लिया, आपने एक प्लांटेड वीडियो देख ली, दूसरा सब तो आपने सुनाई नहीं है कहीं।
1: प्लांटेड
0: सर
1: वीडियो
0: प्लांटेड ही भाई,
1: सर
0: बीच बीच में
1: चार
0: काट के
1: सेपरेट
0: देती।
1: वीडियो हैं, आपने चारों वीडियो देखी है
0: सर? सुनो किसी वीडियो में 28 बंदे हैं सर, राइडर किसी भी वीडियो में जो रेस लगा रहे हैं गाड़ियों से, जो अकाउंट कर रहे हैं वो है सर। प्रॉपर वीडियो पूरी वीडियो इनके पास, राइडरों के पास प्रॉपर पूरी वीडियो होती है। ये कैप्चर क्यों कुछ काट काट क्यों दे रहे हैं वीडियो,
1: सर ये जो माइंडसेट है ना आपका, ये जो माइंडसेट है वो मैच होता है कल्याण से, क्योंकि आपका कहना है कि जो जो लड़की बाइक से गिर गई है, जो आपका दोस्त उसको जाकर मारा है गाड़ी से,
0: गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग माइंडसेट मेरा सेट
1: लड़की गलत है,
0: मेरा गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग कोई मैच नहीं होता किसी से मैच।
1: सारे लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको देखते हैं, देख रहे हैं अभी, सबने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है सर। और आप मतलब खुले से आप झूठ बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये लड़की झूठ झूठ बोल रही है।
0: कानून की पालना करने वाला लड़का हूँ, कानून की पालना करता हूँ। मेरे तो एक ये है कि जो इन्होंने गाड़ी का
1: चलो जाने दो, ये सब सर कल्याण कब आएंगे, कल्याण कब आएगा
0: सर
1: के सामने?
0: जैसे जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम अपना आप उसको पेश करेंगे।
1: मतलब वो हाइडिंग में गया है, वो हाइड कर रहा है,
0: खुद बुला के सर हम खुद बुला के पेश करेंगे हम तो। बल्कि आज ईमानदारी से बताएं सर,
1: तो उन्होंने
0: तो
1: कल्याण ने फोन भी ऑफ कर दिया, अब फोन भी ऑफ कर दिया अब
0: सर। सर अब मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता ना सर, फोन ऑफ क्यों किया, क्या बैटरी बंद है, क्या है, मैं नहीं कह सकता रिगार्डिंग
1: सर। कल्याण का जो असलियत है ना वो सामने आ गया है, जो वो करते हैं
0: सर,
1: जिम जाते हैं,
0: सब,
1: बॉडी
0: सब,
1: बनाते
0: सर,
1: हैं,
0: सबके अपने अपने
1: हैं,
0: अपने अपने व्यू
1: जो
0: होते,
1: करते
0: अपने
1: हैं
0: अपने मैंडसेट होते हैं
1: सर, सबके सामने, दोस्तों के सामने, परिवार
0: सर,
1: के
0: सर,
1: सामने,
0: सर,
1: सब तो सामने
0: सबके सबके सर सबके
1: सर,
0: अपने व्यू अपने माइंडसेट होते हैं
1: सर। कल्याण बैसला के घर के बाहर पुलिस की टीम है, एनडीटीवी की टीम है,
0: बिल्कुल सर
1: सारे मीडिया
0: भी है, सर,
1: है उसके घर के
0: बाहर,
1: बाहर
0: है, सर।
1: वो घर पे नहीं
0: भाई
1: है,
0: हम
1: बोल
0: तो,
1: रहे कि वो घर के घर से निकल गए हैं, घर से भाग गए हैं।
0: हम कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे ही हमें कोई संपर्क होगा आपको भी और क्या नाम है सीआईए को बता के प्रॉपर पेश किया जाएगा, ठीक है। उसने जो

0: काम किया है कोई भी, उसको भी हम देखेंगे, इससे कोई बड़ी वो नहीं
1: है। चलो मुझे लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मानते हैं कि आप उनके संपर्क में नहीं है। अगर वो एनडीटीवी देख रहे हैं आज रात को, आप क्यों क्या बोलना चाहेंगे कल्याण को, डायरेक्टली कल्याण से बात कीजिए और बोलो उनको।
0: मैं कल्याण को क्या, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है ठीक है, उसमें आपको कानून से दूर नहीं जाना चाहिए, कानून के साथ रह के कानून की पालना करके आप कानून के सहयोग के बाद बन सकते हो।
1: ओके नवीन बैंसला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी, थैंक यू। And we've got more breaking news coming in. The Gurugram hit and run incident. An eyewitness has now stepped forward to speak to NDTV. The biker who confronted the accused, Kalyan Baisla, has spoken out for the first time. He says the car was tailgating Shivani. You've heard what the lawyer has said. Complete rubbish. The car was chasing her, tailgating her. The witness says three guys in the car, all were drunk. Baisla tried to stop her twice with the car and then rammed her while overtaking her. Take a look at this.
2: I was on the road us time pe aur Sia ne just mere ko cross kara aur maine dekha ki ek car usko bahut buri tarah chase kar rahi hai road ke upar aur mere ko matlab thoda matlab wo ajeeb laga aur road laga ki wo car aise matlab usko chase kar rahi hai, uska peecha kar rahi hai, kyunki usne wo jo car wala tha na usne bahut zyada closeness matlab bahut zyada close mein tha, wo bahut zyada ekdam tailgating kar raha tha bike ki और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है, और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
3: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
2: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
3: ओके,
2: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
1: Joining me live now tonight on India Matters is Veena Gupta. She's a social activist from Gurugram. She also happens to be India's first female bodyguard. She's a woman professional who lives and works in Gurugram. She drives there, she rides there, and she lives in that city. Veena ji, aapka swagat hai. Is incident ko dekhkar, kya aap surprised the ki aisa reaction tha road par? Kyunki hum bhi Delhi mein rehte hain. और हम तो लगातार देखते हैं कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ज़्यादातर लेडी ड्राइवर्स या लेडी बाइकर्स के खिलाफ ऐसा होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप सरप्राइज थे इस वीडियो को देखकर?
4: देखिए, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। पहली बात तो ये कि ये बहुत पुराने किस्से हैं, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि वुमेन आर नोन एज अ बैड ड्राइवर, तो जब भी कोई बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चलाती है, वेदर इज अ कार या फिर बाइक, तो ये एक पेट्रियार्की माइंडसेट है कि क्यों चला रही है। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग को ईगो हर्ट होती है और खासकर वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं, बिकॉज वी हैव अ वुमेन बाइकर, वी हैव अ मेल बाइकर। नॉट नेसेसरी कि फीमेल बाइकर के साथ ऐसा हुआ है, पीछे किस्सा हुआ था जहाँ पे मेल बाइकर के साथ भी ऐसा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पे। सो पॉइंट ये है कि ये ईगो गेम, जैसे अभी ये वकील जो इनके बोल रहे थे बहुत ही बदतमीजी से, मतलब यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि देखिए अभी भी उन्होंने ब्लेम किया है कि क्यों लड़कियां या क्यों राइडर ऐसे गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले? पुलिस है, पुलिस ने उनको रजामंदी दी है, परमिशन दी है, वो उनकी हेड है कि आप कौन होते हैं, आप क्यों हिट करते हैं, आप क्यों फॉलो करते हैं, आप क्यों कम्पीट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन माइंड सेट है लोगों का कि जब भी वो ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं, एक तो आई थिंक कम्पीट करने की भावना, एक ईगो इशू है, मेल ईगो आई वुड से, सॉरी टू से, बट ये है हमारे समाज में, कुछ गड़बड़ी है जिसको हम नहीं ठीक कर सकते। तो मेरे कुछ सवाल वुमेन राइडर से भी हैं और इन राइडर से भी हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोज यू नो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एफआईआर नहीं होगी, वकील उनकी साइड लेंगे, पुलिस एक्शन करेगी नहीं करेगी, विटनेस देखेगी, तो ये लंबी गेम है। हमें क्या करना है, जब हम सड़क पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आई शुड नो माई डूज एंड डोंट। पहला रूल, नेवर कन्फ्रंट दीज काइंड ऑफ पीपल, स्टॉप, पॉज एंड टेक एक्शन। तो यहाँ पे ये जो गेम होती है ना, ये गेम जो होती है एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। तो मेरा मानना है कि जब आप फ्लाइट वर्सेस फ्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोज के हादसे हैं, तो हमें सिचुएशन को हाथ में उसी समय लेना है ताकि ये आगे एग्रीवेट ना हो। क्योंकि अब देखिए, हम सब लोग चर्चा करेंगे, लंबा केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, बट एंड ऑफ द डे किसको चोट लगी, राइडर को। मुसीबत में कौन है, राइडर, उसकी डेथ हो सकती थी। तो इसका कोई मतलब हल नहीं है, हल मेरे पास ही है, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो सबसे पहला नियम, आप कन्फ्रंट ना करें। अगर आपको लगता है कोई आपको चेस कर रहा है, पॉज, गाड़ी को आगे जाने दे। सबके गाड़ियों में हेलमेट में कैमरा होता है, उस कैमरे से उस एक्टिविटीज को, रजिस्टर नंबर जो कार का है उसको रिकॉर्ड करने दें। और अगर लगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला कि उसकी गाड़ी के काले शीशे थे, वी कैन मेक आउट कि काले शीशे पहली बात तो क्यों नहीं है, जो रूल है हमारे रोड सेफ्टी का, क्यों है काले शीशे, तो वो एक्शन लेना जरूरी है पुलिस वालों को। अगर मुझे लगता है काले शीशे हैं, लोग ड्रंक हैं, तो आप पॉज करके 2 मिनट के लिए रुक जाइए, उस गाड़ी का रजिस्टर नंबर नोट कीजिए, आपके पास कैमरा है हेलमेट में, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, और कोशिश करें 112 को फोन भी कर दें। तो ये कुछ आप अगर डूज एंड डोंट्स करेंगे तो आई थिंक हम सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे और ये जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होगी। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है दुर्घटना, दुर्घटना घटी तो
1: ना जी, मेरा एक सेकंड सवाल ये है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रोड रेज एक प्रॉब्लम है, मेन एंड वुमेन के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है, लेकिन इसमें मुझे मुझे नज़र आता है एक जेंडर इशू भी है। एक लेडी बाइकर है और उसमें ज़्यादा मेल ईगो सामने आता है, स्पेशली इस इंसिडेंट में साफ साफ नज़र आता है कि मेल ईगो प्रिक हुआ है, रेस कर रहे हैं, उसने उसको स्कोल्ड किया है, धमकी दिया है कि ऐसे मत चलाओ ऐसे, और he is basically taking revenge, he is teaching her a lesson.
4: बिल्कुल सही आपने बोला, मैंने पहले क्या बोला, पेट्रियार्की, मेल माइंडसेट है कि इवन अगर जैसे मैं यू नो कार रैली ड्राइवर हूं, अगर मेरी गाड़ी रैली भी नहीं करी है, नॉर्मल मैं एसयूवी चला रही हूं, तो आई हैव नोटिस कि 4 गाड़ियां मेरे को फॉलो करेंगी, मुझे ओवरटेक करेंगी, और मैंने गलती से ओवरटेक कर लिया, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे गाली भी सुननी पड़ी, मुझे ऐसे नॉक करके बोला कि शीशा नीचे करो, तुम क्यों ओवरटेक कर रही हो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मेल ईगो है, जेंडर इशू है कि एक तो वुमेन प्लस बाइक पे राइड कर रही है, बहुत बड़ा ये मेल ईगो हर्ट होता है कि क्यों। फिर वो लेसन देंगे आपको रोड पे, ऐसे शीशे मतलब हैंड से एक्शन करेंगे, शीशा नीचा करो, पॉज करो, रोको। तो यू आर राइट कि वो एक लेसन, एक ये ना सिक माइंडसेट है।
1: Absolutely.
4: और ये जो ऐसे कुछ लोग जो वकील सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ वो तो इनोसेंट है, उसको पर्दा कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि हाँ अभी मैं उसको पेश करूंगा, तो आई थिंक ये स्टार्ट होता है मेरे घर से। अगर घर वाले अपने लड़कों को
1: बिल्कुल
4: सही अपब्रिंगिंग देंगे कि मेल ईगो कुछ नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल, तो आई थिंक इसका
1: समाधान। आई कंप्लीटली एग्री विद यू वीना, एंड आई थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी टुनाइट ऑन एनडीटीवी। आई होप कि कल्याण बैसला जो अभी 36 आवर्स के ऊपर ही इज रनिंग, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज वांटेड, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस आल्सो हैव बीन अप्लाइड ऑन हिम, बट ही इज स्टिल रनिंग, एंड दैट शोज यू कि इतना जिम जाके, इतना बॉडी बना के, फिर दीस पीपल डोंट हैव एनी स्पाइन टू फेस द एक्चुअल लॉ। वीना गुप्ता, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेल, दिस इज गुरुग्राम एंड आई एम गोना गो अहेड एंड से इट मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज टू लिव इन दिस कंट्री। इन 1999 this man flew sorties over the Batalik and Dras sectors during Operation Safed Sagar, the Kargil war, facing Pakistani surface to air missiles to defend this country. 27 years later, he was left bleeding in the parking lot of a corporate park in the same Gurugram on the outskirts of Delhi, struck repeatedly with an iron rod over a minor parking dispute with a parking attendant. This is Group Captain Amit Kumar Gupta. You would know him better as Goofy if you've watched the new Netflix series Operation Safed Sagar on the valor of the Indian Air Force during the Kargil War. This officer had dropped off his family at the entrance of a restaurant.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: सर उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनो, उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आपको पता है, आप सेफ्टी से चलाओ।
1: नवीन जी, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, चार अलग वीडियो है सामने।
0: मैंने वो सारी वीडियो देखी है। वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
1: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
0: नहीं सर।
2: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
3: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना, वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया, अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे, इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को। तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर।
4: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कम्फर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
5: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
6: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ।

0: चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही मैं ऐसा मानता हूँ गलत सोच है।
1: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
2: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
4: A very good morning to you all at the NDTV Anviksha.
5: Nepalese women are incredible entrepreneurs, and I can see a lot of women entrepreneurs here, my friends.
6: Green energy is the talk of the world. India being one of the largest manufacturing hub in the world now. And this is the right time where we see our partnership can be largely scalable.
7: And during this visit of the Prime Minister, I think narrative should go that Nepal is a good place for investment.
8: Gold rush on the field.
9: India's champions are ready.
8: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
9: Asian Games 2026.
8: Go for glory only on NDTV.
10: Towards Kathmandu, there's a helicopter right there.
11: Trishuli Nadi ka ye wo ilaka hai.
12: In Nepal's darkest hour, being there mattered. At any cost, across the devastation, through the impossible.
13: नीचे अगर हम zoom कर हम आपको दिखा सकें उस सुरंग में फंसे लोगों.
12: To make sure Nepal was heard beyond the headlines.
14: Rescue and search operations continue here.
15: जो hanging bridges बने थे वो भी सब कुछ बह गए.
12: Because when it really matters, watching from a distance is not an option. NDTV, when it really matters.
3: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
16: NDTV stands completely engaged with them.
17: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Islamabad is playing a familiar game of smoke and mirrors just weeks ahead of a crucial global terror financing review in Paris. Pakistan has suddenly jacked up the bounty on United Nations designated terrorist Masood Azhar to 7 million Pakistani rupees. But is this genuine counter-terrorism or just a calculated stunt to dodge the international financial blacklist? We leave you with this report that exposes the patterns of deception.
18: As the global terror financing watchdog closes in on its targets, Islamabad has once again deployed its favorite defensive weapon. A highly calculated, well-timed diplomatic smokescreen. Facing severe international financial scrutiny that threatens to paralyze its economy, Pakistan has suddenly and conveniently remembered the existence of its most famous resident. The state is dusting off an old, tired playbook to save its own skin ahead of critical evaluations, attempting to blindside the international community with a sudden burst of anti-terror compliance. Islamabad has jacked up the price on Masood Azhar's head right before global scrutiny peaks. This desperate financial window dressing is a transparent bid to trick international regulators. The Paris meeting looms large, forcing Pakistan to scramble for overnight compliance points. They are terrified of being dragged back onto the devastating financial grey list. Azhar's name has conspicuously relisted in the Federal Investigation Agency's Fresh Fugitive Directory. Keeping him on paper allows Islamabad to pretend they are actively hunting him. But the global community is refusing to hold its breath because everyone knows this is not a sudden awakening of justice, but rather a well-rehearsed charade. For nearly three decades, Pakistan has played fast and loose with the truth, running a sophisticated, state-sponsored protection racket for global terror assets while crying wolf to the international community. Every time the spotlight gets too hot, the state orchestrates a theatrical crackdown to give itself plausible deniability on the world stage. Azhar was freed from an Indian prison in exchange for hijacked flight IC-814 passengers. Pakistan immediately gave him safe passage to launch Jaish-e-Mohammed on its soil. History repeats itself as Islamabad announced a PKR 50 lakh bounty ahead of 2021 review. They routinely use these fake crackdowns to buy time from global watchdogs. While Pakistan claimed Azhar fled to Afghanistan, Indian precision strikes hit his family base in Bahawalpur. The state even tried pushing a massive relief fund for his kin. Ultimately, the leopard never changes its spots, and the global community has grown wary of the same recycled trickery. Be it Hafiz Saeed or the masterminds of the Mumbai attacks, Pakistan follows a highly predictable, cynical pattern. Announce a superficial bounty, freeze a few dead bank accounts ahead of the FATF plenary, and quietly reverse the decisions once the global heat dies down. The world sees right through this deceptive facade, leaving Islamabad's latest geopolitical gambit completely dead on arrival. Bureau Report, NDTV World.
0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
2: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
4: A very good morning to you all at the NDTV Anviksha.
5: Nepalese women are incredible entrepreneurs, and I can see a lot of women entrepreneurs here, my friends.
6: Green energy is the talk of the world. India being one of the largest manufacturing hub in the world now. And this is the right time where we see our partnership can be largely scalable.
7: And during this visit of the Prime Ministers, I think narrative should go that Nepal is a good place for investment.
8: Rush on the field.
9: India's champions are ready.
8: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
9: Asian Games 2026.
8: Go for glory only on NDTV.
3: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
19: High rate, check the audio.
3: Let's do it, let's start.
6: Breaking stories, we're jumping straight into it.
3: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
20: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
21: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
20: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
3: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
2: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
14: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
8: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
22: Marne ke bada kya hoga?
8: As a journalist, I can say you're not alone.
14: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood, weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
3: Across the country.
12: He has tracked the pulse of
17: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, let's have a quick check of the headlines. Gurugram road rage on camera. Schooled by woman biker Tuck Kalyan Bismal runs his car into bike and flees in hiding for 24 hours, brazens it out by blaming the victim. Kargil veteran group captain Amit Kumar Gupta attacked with an iron rod by a parking attendant in Gurugram. Veteran suffers serious elbow and head injuries. Accused has now been arrested. The opposition has hit out over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's UK visit and attendance at Ajit's race event. DMK has says that the TVK Chief Minister should not be wasting the people's money and taxes. Vijay has released highlights of his Silverstone visit. Trophy chore Naqvi chants go viral after Indian women team snub PCB Chief Mohsin Naqvi in Dubai at Asia Cup. BCCI says that call taken by the team was institutional. After Musk and Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI showdown debate, says if AI we build is not helping humanity, then it's not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. All right, we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. We learned that there has been progress as far as the HDFC Bank's new CEO is concerned. There have been two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Bharucha is in race and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit Correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
10: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed, the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bakshi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kaisar Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates, but both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
17: Yeah.
10: Even Bakshi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
17: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
11: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker once jaati thi golf course road se. So वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ, एंड वो बोलता है कि बाइक रोको, एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है, एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ, एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट, एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
13: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
15: संडे मॉर्निंग सर एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी. और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए. और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज, मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में. तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहां से हम सबने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे.
22: ठीक है.
15: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर. और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है. क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा, पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा. लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर. तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
22: अच्छा, आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को.
15: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है. वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है.
22: ठीक है.
15: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है. और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा. मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन.
22: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को.
15: मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम.
22: करेक्ट.
15: और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार. तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे.
22: ओके.
15: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के. और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई. उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी. एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा. मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए. मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा.
17: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बैसला'स लॉयर spoke to NDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
0: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
16: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
0: Haan, to kahan chhipa hua hai?
16: Ek hi kaam se belong karte hain sir.
0: क्यों इतना भाग रहे हैं
16: सर? भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादानी कर रहे हैं कछुला, उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
0: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
16: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
0: घटना में मर सकती थी वो. आपको भी
16: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए ये सर बहुत गलत.
0: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है. और वो हाई
16: सर सर सर सर सर सर सर
0: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
16: सर एक्चुअली सर
0: आंसर नहीं भी कर रहे.
16: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
0: इतना जो
16: जाते
0: हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते?
16: नहीं सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
0: कौन सा संपर्क?
16: और
0: संपर्क
16: नहीं, एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है, कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो. इसमें
0: आपकी कल्याण
16: मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था. सुनो सर मैं
0: इतना जो
16: सर मेरी सुन दो एक सर. मेरा क्या उसका 10 मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसे गांव में गया हूँ.
0: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
16: सर, सर.
0: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादा.
16: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकल रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं?
0: नहीं नहीं, जो भी होता है
16: नहीं सर, जो भी नहीं होता, ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर. दो बात करूँ सर, कोई बात नहीं कर रहा. जो लड़की ने वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी, बिल्कुल जूम करके देखी है. उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है. ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है. एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते.
0: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है. आप
16: सर मान ली सर, मैंने मान ली.
0: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है. एक
16: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ.
0: नवीन जी, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर? 4 अलग वीडियो है सामने.
16: मैंने वो सारी वीडियो देखी है. वो लड़की सर मैं तो उसी के
0: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी.
16: नहीं सर.
17: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Baisla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Baisla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS Gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
1: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है. वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना. वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना. वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी. अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए. अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर. अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है. मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को. तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए. जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर.
4: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कम्फर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
18: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे. तो ये काम हम नहीं कर सकते.
23: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है. क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए. कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते. छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है.
17: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: thrown out and was in fact also told to evacuate the very premises where he was in fact working as a gym operator. We are still showing you the visuals of his house, his residence where he was last found. This is the location, and we have also seen how the CIA, Palwal CIA, is in fact right now trying to track him down. An FIR has been registered as the Gurugram police has taken suo motu cognizance of this video. The video that went viral on social media, and have in fact also registered bailable cases against Kalyan Vaisla. We are showing you how the villagers here have in fact also gathered, and the CIA, Palwal CIA officials, who are right now trying to question them as to where he was last found, and also if they know anything about his whereabouts and where he's in fact right now in hiding. This is the village where he was last found, and we have seen the video of how Sia was in fact trying to stop him from overtake her, but he did not heed to any of her appeals. We have seen multiple times that she was trying to indicate to her that he should not come this close to the bike that she was driving, but he did not heed to the pleads of Sia. After that, he tried to overtake her, and then we saw how this whole incident panned out, how she was violently thrown off her bike, and now he's right now in hiding, and we are in fact also trying to show you the visuals of how this whole incident has panned out. The residents of Kalyan Bansal, in this whole case that we're in fact tracking down, we have seen multiple times that the police have in fact tried to track down his whereabouts, but this is where he was last found, and we have in fact
1: also NDTV is outside his house, the police is outside his house, and they want us to believe that they don't know where Kalyan Vaisla is. He probably has good connections with the powers that be also, and therefore he may be receiving some kind of protection also. It's not too far-fetched to imagine that that could also be a possibility. Anushka, I want you to stay safe. I want you to take care of yourself as you report this story tonight from Palwal, and I will keep in touch with you and I will get back to you. Good job reporting from there. We will find Kalyan Vaisla, even if the police claims not to be able to trace him right now. I had a word, in fact, with Kalyan Vaisla's relative or friend and someone who claims to be his lawyer, Naveen Vaisla, who is representing him, and here's what he had to say. Take a look at this.
2: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Vaisla kahan?
3: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
2: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
3: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
2: Kyon itna bhaag rahe hain?
3: Sir, ye bhaag koi nahi raha sir. Actually, pata kya hota hai? ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादानी करेगा कछुला, उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
2: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
3: सर, सर, सर, सर, सर, सर, सर, देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
2: घटना में मर सकती थी वो, आपको भी
3: नहीं सर, सर, देखो सर, सर, सर, उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
2: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है, और वो हाइड
3: सर
2: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है. एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
3: सर एक्चुअली सर
2: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
3: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
2: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं, और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते.
3: नहीं सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
2: और एक
3: सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द.
2: इसमें आपकी कल्याण
3: मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था. सुनो सर मैं सर मेरी सुन दो, एक सर मेरा क्या उसका दस, मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं, और क्या नाम है, पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ.
2: नहीं अरे ठीक है नवीन जी, एक बात बताइए. हाँ जी, आप बोल रहे हैं
3: उसके गांव में गया हूँ. गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है.
2: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप सर की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान
3: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकल रहे हैं ठीक निकल रहे हैं
2: नहीं नहीं जो भी होता है

0: देखिए आप देखो, आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते
1: हैं। पूरा देश ने वो वीडियो देखा है। आप
0: सर मान ली, सर मैंने मान ली।
1: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है।
0: उसके बाद सुनो पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
1: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, चार अलग वीडियो है सामने।
0: मैंने वो सारी वीडियो देखी है। वो लड़की सर मैं तो उसी के
1: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
0: नहीं सर इनका क्या बस, खाली वो बार बार इसको पिंच कर रहे थे, इनसे आग निकल जाते थे बार बार। ये सारे ये 28 जने थे टोटल
1: राइडर।
0: सर ये तो आपने एक क्लिप देख ली सर, सर ये आपने सर प्लीज सर ये आपने
1: ये आप बोल रहे कि ये डॉक्टर है गलत है,
0: ये सर आपने क्लिप देख ली है। उसने बस खाली एक गलती करी कि गाड़ी स्पीड में चलाई, जो ये राइटर सारे गलती कर रहे थे स्पीड में चला के।
1: आप देश को झूठ बोलना चाहते हैं कि ये अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था।
0: मैं तो सर न्यूज़
1: कैमरे पे हूं,
0: मैं सर वीडियो देख ही आपको बता रहा हूँ।
1: लड़की के जो माँ बाप हैं वो अब अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
0: लड़की के साथ पूरी सिंपैथी है मेरी, मैं कहूँगा भगवान उसको जल्दी ठीक करे, कोई इशू नहीं है
1: सर, वो
0: ठीक है। पर ये
1: उसका
0: जो राइडर है ना सर, मेरी
1: बात निकल चुकी है, अब तो कल्याण को सामने आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा।
0: ये तो मैं तो पुलिस की कमी बताता हूँ, जो राइडरों को रोड पे निकालते हैं
1: सर। एक स्ट्रेट बात बताइए, ये जो कल्याण जो आपके भाई हैं या कजन हैं जो भी हैं, आपके क्लाइंट भी
0: हैं, जो भी है सर, काम के नाते साथ,
1: ये तो सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं, ये तो जिम ओन कर चुके हैं,
0: इतना
1: भक्ति करते हैं, और सोशल मीडिया पर म्यूजिकल
0: कबड्डी का सर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्लेयर का सर,
1: वो तो सब करते हैं, वो कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कायर है फिर। क्या फायदा है कबड्डी खेलना इंटरनेशनल लेवल पर, कबड्डी भक्ति करना यूट्यूब पर,
0: जब तक
1: इसका सब क्या फायदा है,
0: उसकी बात
1: नहीं आ सकते हो तो।
0: आपने सर एक पक्ष सुन लिया, आपने एक प्लांटेड वीडियो देख ली, दूसरा सब तो सुना ही नहीं है।
1: प्लांटेड
0: वीडियो
1: है आपने, चारों वीडियो देखी आप
0: सर, सुनो किसी वीडियो में 28 बंदे हैं सर, राइडर किसी भी वीडियो में जो रेस लगा रहे हैं गाड़ियों से, जो अकाउंट कर रहे हैं वो है सर, प्रॉपर वीडियो, पूरी वीडियो इनके पास, राइडरों के पास प्रॉपर पूरी वीडियो होती है। ये कैप्चर क्यों कुछ खा कर क्यों दे रहे हैं वीडियो, प्रॉपर पूरी एक वीडियो दे रहे सारी।
1: सर ये जो माइंडसेट है ना आपका, ये जो माइंडसेट है वो मैच होता है कल्याण से, क्योंकि आपका कहना है कि जो जो लड़की बाइक से जो आपका दोस्त उसको जाकर मारा है गाड़ी
0: तेज चलाने के रिगार्डिंग माइंडसेट मेरा सेट
1: नहीं है।
0: मेरा गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग कोई मैच नहीं होता किसी से मैच।
1: सारे लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं अभी, सबने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है सर, और आप मतलब खुले से आप झूठ बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये लड़की झूठ बोल रही है।
0: कानून की पालना करने वाला लड़का हूँ, कानून की पालना करता हूँ, मेरे तो एक ही है कि जो इन्होंने गाड़ी का तेज चलाई, जो
1: कल्याण कब आएगा सर इसके सामने,
0: जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम अपना आप उसको पेश करेंगे।
1: मतलब वो हाइड में गया है, वो हाइड कर रहा है,
0: खुद बुला के सर, हम खुद बुला के पेश करेंगे हम तो, बल्कि ईमानदारी से बता रहे सर।
1: तो उन्होंने कल्याण ने फोन भी ऑफ कर दिया,
0: सर अब मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता ना सर, फोन ऑफ क्यों किया, क्या बैटरी बंद है, क्या है, मैं नहीं कह सकता रिगार्डिंग।
1: सर कल्याण का जो असलियत है ना वो सामने आ गया है, जो वो करते हैं सर, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सबके सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने,
0: सबके अपने व्यू अपने माइंडसेट होते हैं।
1: कल्याण बैसला के घर के बाहर पुलिस की टीम है, एनडीटीवी की टीम है,
0: बिल्कुल सर,
1: सारे मीडिया है उसके घर के बाहर,
0: सर
1: वो घर पे नहीं है, हम बोल रहे कि वो घर के घर से

0: निकल गए हैं घर से, भाग भाग गए हैं आप।
1: हम कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे ही हमें कोई संपर्क होगा आपको भी और क्या नाम है CIA को बता के प्रॉपर पेश किया जाएगा, ठीक है। उसने जो अपराध किया है कोई भी उसको भी हम देखेंगे, इससे कोई बड़ी वो नहीं
0: है। चलो मुझे लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मानते हैं कि आप उनके संपर्क में नहीं है। अगर वो NDTV देख रहे हैं आज रात को, आप क्यों क्या बोलना चाहेंगे कल्याण को डायरेक्टली? कल्याण से बात कीजिए और बोलो उनको।
1: मैं कल्याण को क्या, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है ठीक है, उसमें आपको कानून से दूर नहीं जाना चाहिए। कानून के साथ रह के कानून की पालना करके आप कानून के सहयोग के बाद बन सकते हो।
0: ओके नवीन बैंसला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू NDTV, थैंक यू। एंड वी हैव गॉट मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, द गुरुग्राम हिट एंड रन incident. An eyewitness has now stepped forward to speak to NDTV. The biker who confronted the accused, Kalyan Baisla, has spoken out for the first time. He says the car was tailgating Shivani. You've heard what the lawyer has said, complete rubbish. The car was chasing her, tailgating her. The witness says three guys in the car, all were drunk. Baisla tried to stop her twice with the car and then rammed her while overtaking her. Take a look at this.
2: I was on the road उस time पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर, और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की। और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है, और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसकी विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
3: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को?
2: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर, और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
3: ओके,
2: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
0: Joining me live now tonight on India Matters is Veena Gupta. She's a social activist from Gurugram. She also happens to be India's first female bodyguard. She's a woman professional who lives and works in Gurugram. She drives there, she rides there, and she lives in that city. Veena ji, aapka swagat hai. Is incident ko dekhkar, kya aap surprised the ki aisa reaction tha road par? Kyunki hum bhi Delhi mein rehte hain. और हम तो लगातार देखते हैं कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ज़्यादातर लेडी ड्राइवर्स या लेडी बाइकर्स के खिलाफ ऐसा होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप सरप्राइज थे इस वीडियो को देखकर?
4: देखिए, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। पहली बात तो ये कि ये बहुत पुराने किस्से हैं, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि वुमेन आर नोन एज अ बैड ड्राइवर, तो जब भी कोई बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चलाती है, वेदर इज अ कार या फिर बाइक, तो ये एक पेट्रियार्की माइंडसेट है कि क्यों चला रही है। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग को ईगो हर्ट होती है, और खासकर वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं, बिकॉज वी हैव अ वुमेन बाइकर, वी हैव अ मेल बाइकर। नॉट नेसेसरी कि फीमेल बाइकर के साथ ऐसा हुआ है, पीछे किस्सा हुआ था जहाँ पे मेल बाइकर के साथ भी ऐसा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पे। सो पॉइंट ये है कि ये ईगो गेम, जैसे अभी ये वकील जो इनके बोल रहे थे, बहुत ही बदतमीजी से, मतलब यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि देखिए अभी भी उन्होंने ब्लेम किया है कि क्यों लड़कियां या क्यों राइडर ऐसे गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले? पुलिस है, पुलिस ने उनको रजामंदी दी है, परमिशन दी है, वो उनकी हेड है कि आप कौन होते हैं, आप क्यों हिट करते हैं, आप क्यों फॉलो करते हैं, आप क्यों कम्पीट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि जब भी वो ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं एक तो आई थिंक कम्पीट करने की भावना, एक ईगो

0: not much if you look at it. It's not as if, you know, she's the third and the fourth board are much bigger. But whatever gain we made would be used in these kind of things. Submarines are strategic national assets. They are not a Navy's, you know, unit. They are more than capital. They are capital in capital words in that
1: right.
0: sense.
1: Right.
0: And you just got to allow those people to live. And making a submarine every year. But like, we are so hungry for submarines now. I would take a submarine every 6 months now. But the implication of taking a submarine every 6 months is that if I'm getting six submarines, in 3 years, I finish my production.
1: Yep.
0: And what do I do in the fourth year to those people? Absolutely the wrong way of doing it. One should not come to this level of hunger or, you know, shortages as we are today. We've done that earlier. We do it every time. It should be it has to be a continuum, what we call the drumbeat of production. The drumbeat of production, I would say, optimum would be 2.5
1: yep.
0: years or 3 years for a submarine, made in batches of three. A good, you know, international norm.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
6: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: High rate, check the audio.
5: Let's do it. Let's start.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
9: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
5: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
10: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
9: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Shivarur, NDTV.
11: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
12: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
13: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
14: Marne se bada kya hoga?
13: As a journalist, I can say you're not alone.
12: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
15: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here? They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
16: We are more than 90 people here. So we are trying best.
15: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
1: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
14: So many attacks.
1: The chaos and...
17: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, let's have a quick check of the headlines. Gurugram road rage on camera, schooled by woman biker Tuck Kalyan Bismal runs his car into bike and flees in hiding for 24 hours, brazens it out by blaming the victim. Kargil veteran group captain Amit Kumar Gupta attacked with an iron rod by a parking attendant in Gurugram. Veteran suffers serious elbow and head injuries. Accused has now been arrested. The opposition has hit out over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's UK visit and attendance at Ajit's race event. DMK has says that the TVK Chief Minister should not be wasting the people's money and taxes. Vijay has released highlights of his Silverstone visit. Trophy chore Naqvi chants go viral after Indian women team snub PCB Chief Mohsin Naqvi in Dubai at Asia Cup. BCCI says that call taken by the team was institutional. After Musk and Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI showdown debate, says if AI we build is not helping humanity, then it's not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. All right, we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. We learned that there has been progress as far as the HDFC Bank's new CEO is concerned. There have been two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Bharucha is in race and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
18: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed the incumbent CEO, Shashi Jagdishan, who has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bagchi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kaisar Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates, but both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
17: Yeah.
18: Even Bagchi as well, he has a solid profile and being a ICICI Group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over past few months as far as HDFC Bank is concerned.
17: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
19: आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको. एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है. रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ. एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
20: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
21: संडे मॉर्निंग इधर एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी. और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए. और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में. तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे.
22: ठीक है.
21: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर. और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है. क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था. वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा. लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर. तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
22: अच्छा, आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को.
21: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है. वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है.
22: ठीक है.
21: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है. और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा. मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन.
22: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को.
21: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम.
22: करेक्ट.
21: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार. तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे.
22: ओके.
21: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के. और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी. एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा. मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए. मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा.
17: वेल द अक्यूज्ड कल्याण बैसला'स लॉयर spoke to NDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
0: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
2: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
0: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
2: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
0: क्यों इतना भाग रहे हैं?
2: सर भाग सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादा नहीं कर रहा कुछ, उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
0: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
2: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
0: घटना में मर सकती है आपको भी
2: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
0: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
2: सर सर सर सर सर सर सर
0: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
2: सर एक्चुअली सर
0: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
2: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
0: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते?
2: नहीं सर, तो बिल्कुल आ जाएंगे सर. सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
0: कौन सा
2: और
0: संपर्क?
2: एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर मेरा. एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द. इसमें
0: आपकी कल्याण
2: मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में
0: इतना जो
2: सुनो सर सही सर, मैं
0: इतना जो
2: मैं सर सुनो सर मेरी सुन दो एक सर. मेरा क्या मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ.
0: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको. क्योंकि आप की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान.
2: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे ये राइडर निकल रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं?
0: नहीं नहीं जो भी होता है
2: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो एक वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर. दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा. जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है. उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है. ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है. एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते हैं.
0: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है. आप
2: सर मान ली सर, मैंने मान ली.
0: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है. एक
2: उसके बाद सुनो उसने उसके लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ.
0: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने.
2: मैंने वो सारी वीडियो देखी है. वो लड़की सर मैं तो उसी के
0: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी.
2: नहीं सर.
17: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road.

0: Meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
1: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना। वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया। अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इन्जॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को। तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर।
2: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कम्फर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
3: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
4: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है।
0: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: running a sophisticated, state-sponsored protection racket for global terror assets while crying wolf to the international community. Every time the spotlight gets too hot, the state orchestrates a theatrical crackdown to give itself plausible deniability on the world stage. Azhar was freed from an Indian prison in exchange for hijacked flight IC-814 passengers. Pakistan immediately gave him safe passage to launch Jaish-e-Mohammed on its soil. History repeats itself as Islamabad announced a PKR 50 lakh bounty ahead of 2021 review. They routinely use these fake crackdowns to buy time from global watchdogs. While Pakistan claimed Azhar fled to Afghanistan, Indian precision strikes hit his family base in Bahawalpur. The state even tried pushing a massive relief fund for his kin. Ultimately, the leopard never changes its spots, and the global community has grown wary of the same recycled trickery. Be it Hafiz Saeed or the masterminds of the Mumbai attacks, Pakistan follows a highly predictable, cynical pattern. Announce a superficial bounty, freeze a few dead bank accounts ahead of the FATF plenary, and quietly reverse the decisions once the global heat dies down. The world sees right through this deceptive facade, leaving Islamabad's latest geopolitical gambit completely dead on arrival. Bureau Report, NDTV World.
1: Lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
2: so many attacks,
1: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
4: War-struck country.
1: Hard questions.
4: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
3: Zionist.
2: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
6: Launch control 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your ND.
9: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, let's have a quick check of the headlines. Gurugram road rage on camera. Schooled by woman biker, Tuck Kalyan Bismal runs his car into bike and flees in hiding for 24 hours, brazens it out by blaming the victim. Kargil veteran group captain Amit Kumar Gupta attacked with an iron rod by a parking attendant in Gurugram. Veteran suffers serious elbow and head injuries. Accused has now been arrested. The opposition has hit out over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's UK visit and attendance at Ajit's race event. DMK has says that the TVK Chief Minister should not be wasting the people's money and taxes. Vijay has released highlights of his Silverstone visit. Trophy chore Naqvi chants go viral after Indian women team snub PCB Chief Mohsin Naqvi in Dubai at Asia Cup. BCCI says that call taken by the team was institutional. After Musk and Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI showdown debate, says if AI we build is not helping humanity, then it's not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. All right, we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. We learned that there has been progress as far as the HDFC Bank's new CEO is concerned. There have been two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD, Kazid Bharucha, is in race, and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit Correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
4: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed, the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bagchi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kazid Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates. But both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
9: Yeah.
4: Even Bagchi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
9: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
5: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker gangs ja rahi thi golf course road se. So wahi us road pe ye gaadi wala aata hai, wo mujhe starting se chase karne ki koshish kar raha tha. Wo kuch action karta hai, maine usko bola ki aap thoda dur chalao, and wo bolta hai ki bike roko, and trust me they all were drunk. And main koshish karti hu ki main usse thoda sa aage chalu ki wo apni gaadi meri bike ke aage aake na lagaye. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए, पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ, एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट, एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे इजीली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
10: जी, 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा 100 मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
11: संडे मॉर्निंग जरा एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए और मेरे को एमएस मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने कहना कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं चलो चलते हैं राइड पे.
9: ठीक है.
11: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
9: अच्छा आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को
11: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है.
9: ठीक है.
11: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला सिया को कुछ इशारा करा देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन.
9: अच्छा वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को.
11: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम.
9: करेक्ट.
11: हाँ और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार. तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे.
9: ओके.
11: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई मेरे सामने एक कार आ गई उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा. मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा होना तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा.
12: वेल द अक्यूज कल्याण बैसलाज लॉयर spoke to EdiTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
13: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
14: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai, sir.
13: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
14: Hum ek hi kaam se belong karte hain, sir.
13: क्यों इतना भाग रहे हैं?
14: सर भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं मैं समझता हूँ इस बात को. वो नादानी कर रहा है उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर. ठीक है उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
13: नहीं कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
14: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ सर.
13: घटना में मर सकती है आपको भी
14: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
13: आपका जो नादान दोस्त है आपका जो बेकसूर दोस्त है आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
14: सर सर सर सर सर सर सर
13: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है. एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है. पुलिस का
14: सर एक्चुअली सर
13: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
14: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर.
13: इतना जो जाते हैं इतना जो फोटो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते.
14: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे. सर सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा 100% आएगा सर.
13: कौन सा संपर्क? और
14: संपर्क एक सीधी सी नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता ना कायर ना कोई मर्द हो. इसमें
13: आपकी बात हुई है आपकी कल्याण से
14: मेरी बात मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था। इतना जो सुनो सर मैं इतना जो मैं सर सुनो सर मेरी सुन दो एक सर मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गांवा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था काम ज्यादा था मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया उसके बाद ये गांव में था मैं इसे गांव में गया हूँ।
13: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको क्योंकि आप सर की एक छोटी बात है छोटी सी गलती है ये नादा
14: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकलने ये ठीक निकल रहे हैं
13: नहीं नहीं जो भी होता है
14: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर एक चीज बताओ वो तो सुनो सर वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर मैं बता रहा हूँ मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर दो बात करूंगा सर कोई बात नहीं कर रहा जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी बिल्कुल जूम करके देखी है उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे देखो यू टर्न है एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी उसको साइड में लिया वो एकदम हिट हो गई है ठीक है उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है एक ये आप देखोगे सर मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता सर, ना आप कर सकते
13: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है आप
14: सर मान ली सर मैंने मान ली
13: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है एक
14: उसके बाद सुनो उसने उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ
13: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर 4 अलग वीडियो है सामने
14: मैंने वो सारी वीडियो देखी है वो लड़की सर सुन मैं तो उसी के
13: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी
14: नहीं सर
12: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics overflowed. What was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than 2 decades ago.
15: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत अपना पहनावा अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना वो दक्षिण हो वो नॉर्थ ईस्ट हो वो वेस्ट हो सब जगह थोपना वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है मैं तो शाकाहारी हूँ

0: लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को, तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर,
1: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कंफर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर, फॉर दोज पर्टिकुलर डेलीगेट्स। ओके, यू हैव you have a problem with beef, leave beef, it's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine, but there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it, you can't force feed them, no?
2: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
3: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है।
4: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you this visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Bharucha is in race, and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
1: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, who has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bagchi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kazid Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates. But both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
0: Yeah.
1: Even Bagchi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
0: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker gang se jaati thi golf course road se. So वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है. रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखे और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
3: जी, 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
4: सर, संडे मॉर्निंग जरा एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो, एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए। और मेरे को एमएस मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे। तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने कहना कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे।
0: ठीक है।
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की। और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा, लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर, तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी।
0: अच्छा, आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को,
4: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है, वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है।
0: ठीक है।
4: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है, और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
0: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम।
0: करेक्ट।
4: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
0: ओके।
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए, मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा।
0: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बेसला'स लॉयर spoke to EDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
5: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
6: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
5: Haan, to kahan chhipa hua hai?
6: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
5: क्यों इतना भाग रहे हैं?
6: सर भाग, सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर, एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को, वो नादानी कर रहा है, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
5: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
6: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ,
5: घटना में मर सकती है आपको भी
6: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत,
5: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
6: सर सर सर सर सर सर सर
5: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
6: सर एक्चुअली सर
5: आंसर नहीं भी कर रहे हैं
6: सर सर, मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
5: इतना जो
6: जाते
5: हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते ये?
6: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा 100% आएगा सर।
5: कौन सा संपर्क?
6: और
5: संपर्क नहीं,
6: एक सीधी सी नहीं, अब नहीं है कोई संपर्क नहीं सर, मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो, इसमें
5: आपकी बात हुई है, आपकी कल्याण से
6: मेरी बात मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था। इतना जो सुनो तो सही सर, मैं सर मेरी सुन दो।

0: 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गांवा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे। 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया। उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
1: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप सर की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादा।
0: नहीं नहीं सर, एक्चुअली सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकलने ये ठीक निकल रहे हैं?
1: नहीं नहीं, जो भी होता है
0: नहीं सर, जो भी नहीं होता, ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है। उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है। एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते
1: हैं, पूरा देश ने वो वीडियो देखा है।
0: आप सर मान ली सर, मैंने मान ली,
1: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, एक
0: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
1: नवीन जी, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने।
0: मैंने वो सारी वीडियो देखी है, वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
1: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
0: नहीं सर।
2: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused, Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS Gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than 2 decades ago.
3: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना, वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी, अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए, अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है, मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को, तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित करता है।
4: No, they are free to take any decision that they want. But when you are calling for an international delegation, people expect you to have comfort foods for that particular, for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
5: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
6: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते हैं। छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है।
2: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, let's have a quick check of the headlines. Gurugram road rage on camera, schooled by woman biker Tuck Kalyan Bismal runs his car into bike and flees in hiding for 24 hours, brazens it out by blaming the victim. Kargil veteran group captain Amit Kumar Gupta attacked with an iron rod by a parking attendant in Gurugram. Veteran suffers serious elbow and head injuries. Accused has now been arrested. The opposition has hit out over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's UK visit and attendance at Ajit's race event. DMK has says that the TVK Chief Minister should not be wasting the people's money and taxes. Vijay has released highlights of his Silverstone visit. Trophy chore Naqvi chants go viral after Indian women team snub PCB Chief Mohsin Naqvi in Dubai at Asia Cup. BCCI says that call taken by the team was institutional. After Musk and Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI showdown debate, says if AI we build is not helping humanity, then it's not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. All right, we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. We learned that there has been progress as far as the HDFC Bank's new CEO is concerned. There have been two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Bharucha is in race and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit Correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
1: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed, the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bagchi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kaisar Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates. But both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
0: Yeah.
1: Even Bagchi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over past few months as far as HDFC Bank is concerned.
0: Absolutely. Keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker runs chahti thi golf course road se. So वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ, एंड वो बोलता है कि बाइक रोको, एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है, एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है. रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ, एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट, एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
3: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
4: संडे मॉर्निंग इधर एज यूजुअल मैं हर बागी तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी. और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट ऑफ पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए, और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में. तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे.
5: ठीक है.
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर. और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है. क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा. लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर. तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
5: अच्छा, आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को.
4: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है. वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है.
5: ठीक है.
4: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है. और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा. मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन.
5: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को.
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम.
5: करेक्ट.
4: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार. तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे.
5: ओके.
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के. और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी. एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा. मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए. मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा.
0: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बैसला'स लॉयर spoke to NDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
6: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
7: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
6: Haan, to kahan chhipa hua hai?
7: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
6: क्यों इतना भाग रहे हैं?
7: सर भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादा नहीं कर रहे कुछ, उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
6: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
7: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
6: घटना में मर सकती है आपको भी
7: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
6: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
7: सर सर सर सर सर सर सर
6: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है. एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
7: सर एक्चुअली सर
6: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
7: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
6: इतना जो इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते ये?
7: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता है वो आएगा, 100% आएगा सर.
6: कौन सा संपर्क?
7: एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर मेरा. एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द. इसमें
6: आपकी बात हुई है, आपकी कल्याण
7: मेरी बात. मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था.
6: इतना जो
7: सुनो सर मैं
6: इतना जो
7: मैं सर सुनो सर मेरी सुन दो एक सर. मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसे गांव में गया हूँ.
6: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
7: सर, सर.
6: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान.
7: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकल रहे ठीक निकल रहे हैं?
6: नहीं नहीं जो भी होता है
7: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ. वो तो सुनो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ. मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर. दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा. जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है. उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको. एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो, वहां पे देखो यू टर्न है एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया और वो एकदम हिट हो गई है. ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है. एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते.
6: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है. आप
7: सर मान ली सर, मैंने मान ली.
6: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है. एक
7: उसके बाद सुनो उसके लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ.
6: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने.
7: मैंने वो सारी वीडियो देखी है. वो लड़की सर मैं तो उसी के
6: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी.
7: नहीं सर.
0: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Baisla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Baisla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics overflowed. What was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
8: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है. वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना. वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना. वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी. अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया. अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर. अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है. मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को. तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए. जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित करता है.
9: They are free to take any decision that they want, but when you are calling for an international delegation, people expect you to have comfort foods for that particular for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
10: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे. तो ये काम हम नहीं कर सकते.
11: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है. क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए. कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते. छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है.
0: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: Delhi's biggest suburb that everyone is talking about today. Watch it really carefully, viewer, because there's a good chance you've already seen it, but I want you to watch it again. A woman biker, Shivani, riding on the posh upscale golf course road in Gurugram, tells a car driver to keep his distance and drive carefully. And that apparently wounded his pride. He follows her and then he deliberately rams her motorcycle at high speed and then takes off in his car. She is flung onto the road violently, all of it captured on the dash cam of her motorcycle. Miraculously, Shivani survives. She's injured, her family is traumatized, and they want attempt to murder charges. The man police are looking for is this cowardly, muscle-bound meathead named Kalyan Besla, a quintessential gym-obsessed bouncer-like thug that has become a common sight on Delhi's outskirts. An over-proteined tough guy who poses in music videos, pretends to be a divine devotee while flexing biceps for the camera. But where is he now? He's in hiding. Kalyan Besla, for all that muscle-bound power and posturing, is hiding like the typical coward that most such thugs are. Because apparently all that muscle is useful for posing, but not for finding the spine to face the consequences of what you allegedly did. Ram a lone woman biker because she scolded you on the road. Now, the car wasn't even Besla's, by the way. It was borrowed from an army soldier friend who's posted somewhere in Assam. But this man's ego, Kalyan Besla's ego, was apparently so fragile on the road, his masculine pride so catastrophically wounded by being schooled by a woman biker, that this car basically became his lathi. And then he ran off, hiding in his village, switching off his phone. What kind of tough guy does that? Ram a woman off her motorcycle and then disappear? Muscles of steel, courage of wet tissue. And what shocks me most is that women in the Delhi National Capital Region, viewer, are not shocked at all by this. Ask women who drive or ride in Gurugram, the taunts, the threats, the intimidation and road aggression are everyday routine matters. Some women bikers cover themselves from head to toe, not just against pollution and sun, but to conceal that they're women and simply get through the ride. Gurugram sells itself as a gleaming global city. But this is Gurugram too. Road rage, entitlement, casual violence, and the pathetic fragility of the male ego every single day on the road. Kalyan Besla, if you're the tough guy you like pretending to be, stop hiding, come out, and face the law. And while Kalyan's friends and family try and hide him and try and come up with useless excuses that it was not a hit and run, NDTV has accessed a new video, a fourth video of this murderous hit and run, where you can clearly see, perhaps in the clearest way of all, that this thug Kalyan Besla deliberately swerved his car into Shivani's bike. This new video completely lays to waste any excuses, any attempt to divert and falsify what actually happened, which is what Kalyan Besla's family, friends and lawyer are attempting to do at this point of time. Just take a look at this video very carefully. The car simply swerves into the bike and Shivani is violently thrown off the bike and she doesn't stand a chance, because the narrative being peddled right now by the family and friends of Kalyan Besla, who by the way is still in hiding like the coward that he is that this is an edited video, that didn't really happen, there was actually a U-turn, he was trying to take a turn and it happened, she was the one driving rashly. Take a look at this video and decide for yourself what has actually happened. Let's go across to NDTV's Anushka Garg, live with us from Palwal in Haryana, in fact, right outside Kalyan Besla's residence. Anushka, you've been chasing Kalyan all day today in Palwal in Haryana. It looks like he has switched off his phone. He doesn't want to face NDTV's cameras, NDTV's questions. This muscle-bound criminal is apparently in hiding. What is his family telling you? Where is he right now?
1: Well, that's right, Shiv. We are outside the residence.
2: found, according to the CIA officials. We're showing you the visuals from outside his residence right now. What we are in fact seeing here is that the Palwal CIA team were right now just outside the very house of the this accused that we're in fact showing you the visuals from. We're clearly showing you what kind of a gathering that can be seen here, and also how these people were in fact gathered here to see what the CIA was in fact, you know, doing here, and how in fact they are trying to track him down at the moment. This was the last found location of Kalyan Vaisla, and we're also in fact gone to the gym where he was working for the past 2 years. He was working there for the past two months.
1: He was in fact thrown out and was in fact also told to evacuate the very premises where he was in fact working as a gym operator. We are still showing you the visuals of his house, his residence where he was last found. This is the location, and we have also seen how the CIA, Palwal CIA, is in fact right now trying to track him down. An FIR has been registered as the Gurugram police has taken suo motu cognizance of this video. The video that went viral on social media and have in fact also registered bailable cases against Kalyan Vaisla. We are showing you how the villagers here have in fact also gathered, and the CIA, Palwal CIA officials who are right now trying to question them as to where he was last found, and also if they know anything about his whereabouts and where he's in fact right now in hiding. This is the village where he was last found, and we have seen the video of how Sia was in fact trying to stop him from overtake her, but he did not heed to any of her appeals. We have seen multiple times that she was trying to indicate to her that he should not come this close to the bike that she was driving, but he did not heed to the pleads of Sia. After that, he tried to overtake her, and then we saw how this whole incident panned out, how she was violently thrown off her bike, and now he's right now in hiding, and we are in fact also trying to show you the visuals of how this whole incident has panned out. The residents of Kalyan Bansal, in this whole case that we're in fact tracking down, we have seen multiple times that the police have in fact tried to track down his whereabouts, but this is where he was last found, and we have in fact
0: also NDTV is outside his house, the police is outside his house, and they want us to believe that they don't know where Kalyan Vaisla is. He probably has good connections with the powers that be also, and therefore he may be receiving some kind of protection also. It's not too far-fetched to imagine that that could also be a possibility. Anushka, I want you to stay safe. I want you to take care of yourself as you report this story tonight from Palwal, and I will keep in touch with you and I will get back to you. Good job reporting from there. We will find Kalyan Vaisla, even if the police claims not to be able to trace him right now. I had a word, in fact, with Kalyan Vaisla's relative or friend and someone who claims to be his lawyer, Naveen Vaisla, who is representing him, and here's what he had to say. Take a look at this.
3: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Vaisla kahan?
4: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
3: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
4: Ek hi kaam se belong karte hain sir.
3: Kyon itna bhaag rahe hain?
4: Sir, ye bhaag koi nahi raha sir. Actually, pata kya hota hai? ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादानी कर रहा है, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
3: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
4: सर, देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
3: घटना में मर सकती है आपको भी.
4: नहीं सर, सर देखो सर, सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
3: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है, और वो हाई
4: सर
3: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है. एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
4: सर एक्चुअली सर
3: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
4: सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
3: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं, और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते.
4: नहीं सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
3: और एक
4: सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हूँ. इसमें
3: आपकी कल्याण
4: मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था. सुनो सर, मैं सर मेरी सुन दो, एक सर. मेरा क्या, मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गांव कोर्ट चल रहे हैं, और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे। फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया। उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
3: नहीं अरे ठीक है नवीन जी, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं
4: उसके गांव में गया हूँ, गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है।
3: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान।
4: नहीं नहीं सर सर सर, एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकल रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं?
3: नहीं नहीं जो भी होता है
4: नहीं सर, जो भी नहीं होता, ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है, उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है, एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते,
3: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है, आप
4: सर मान ली सर, मैंने मान ली,
3: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, एक
4: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
3: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने,
4: मैंने वो सारी वीडियो देखी है, वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
3: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
4: नहीं सर इनका क्या बस, खाली वो बार बार इसको पिंच कर रहे थे, इनसे आग निकल जाते थे बार बार, ये सारे ये 28 30 जने थे टोटल राइडर सर, ये तो आपने एक क्लिप देख ली सर, सर ये आपने सर सर सर सर प्लीज सर ये आपने
3: ये आप बोल रहे कि ये डॉक्टर है गलत है,
4: ये सर आपने क्लिप देख ली है, उसने बस खाली एक गलती करी कि गाड़ी स्पीड में चलाई, जो ये रहे थे सारे गलती कर रहे थे स्पीड में चला के।
3: आप अब देश को झूठ बोलना चाहते हैं कि ये अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था,
4: मैं तो सर न्यूज़
3: कैमरे पे है,
4: मैं सर वीडियो देख के ही आपको बता रहा हूँ,
3: लड़की के जो माँ बाप हैं वो अब अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है,
4: लड़की के साथ पूरी सिंपैथी है मेरी, है मैं कहूँ भगवान उसको जल्दी ठीक करे, कोई सुनी है
3: सर, वो
4: ठीक है, पर ये सर सर
3: उसका
4: जो राइडर है ना सर, मेरी
3: बात निकल चुकी है, अब तो कल्याण को सामने आना पड़ेगा,
4: ये तो मैं तो पुलिस की कमी बताता हूँ, जो राइडरों को रोड पे निकालते हैं
3: सर, एक स्ट्रेट बात बताइए, ये जो कल्याण जो आपके भाई हैं या कजन हैं जो भी हैं, आपके क्लाइंट भी हैं,
4: ये तो
3: सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं, ये तो जिम ओन कर चुके हैं,
4: भक्ति
3: करते हैं,
4: सोशल मीडिया पर
3: म्यूजिकल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कायर है फिर
4: सर, सर सर सर कायर तो सर,
3: क्या बात है, क्या फायदा है कबड्डी खेलना इंटरनेशनल लेवल पर, कबड्डी
4: भक्ति
3: करना यूट्यूब पर,
4: जब तक सर सर क्या फायदा है, उसकी बात
3: नहीं आ सकते हो तो
4: आपने सर एक पक्ष सुन लिया, आपने एक प्लांटेड वीडियो देख ली, दूसरा सब तो आपने सुना ही नहीं है,
3: प्लांटेड
4: सर प्लांटेड
3: वीडियो है, आपने चारों वीडियो देखी आप
4: सर, सुनो किसी वीडियो में 28 बंदे हैं सारे राइडर, किसी भी वीडियो में जो रेस लगा रहे हैं गाड़ियों से, जो टॉन्ट कर रहे हैं वो है सर, प्रॉपर वीडियो, पूरी वीडियो इनके पास, राइडरों के पास प्रॉपर पूरी वीडियो होती है, ये कैप्चर क्यों कुछ काट काट क्यों दे रहे हैं वीडियो, प्रॉपर एक वीडियो दे रहे सारे
3: सर, ये जो माइंड सेट है ना आपका, ये जो माइंड सेट है वो मैच होता है कल्याण से, क्योंकि आपका कहना है कि जो जो लड़की बाइक से
4: गिरी, मेरा माइंडसेट,
3: जो आपका दोस्त उसको जाकर
0: मारा है गाड़ी,
4: गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग माइंडसेट मेरा सेट नहीं होता, मेरा गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग कोई मैच नहीं होता किसी से मैच।

0: उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता ना सर, फोन ऑफ क्यों किया, क्या बैटरी बंद है, क्या है, मैं नहीं कह सकता इस रिगार्डिंग।
1: सर कल्याण का जो असलियत है ना वो सामने आ गया है, जो वो करते हैं सब, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सबके सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने,
0: सर सबके सबके सर सबके अपने व्यू अपने माइंडसेट होते हैं।
1: कल्याण बैसला के घर के बाहर पुलिस की टीम है, एनडीटीवी की टीम है,
0: बिल्कुल सर,
1: सारे मीडिया भी है उसके घर के बाहर,
0: भी है सर।
1: वो घर पे नहीं है, हम बोल रहे कि वो घर के घर से निकल गए हैं, घर से भाग गए हैं।
0: हम कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे ही हमें कोई संपर्क होगा आपको भी और क्या नाम है सीआईए को बता के प्रॉपर पेश किया जाएगा, ठीक है। उसने जो अपराध किया है कोई भी उसको भी हम देखेंगे, इससे कोई बड़ी वो नहीं है।
1: चलो मुझे लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मानते हैं कि आप उनके संपर्क में नहीं है। अगर वो एनडीटीवी देख रहे हैं आज रात को, आप क्यों क्या बोलना चाहेंगे कल्याण को, डायरेक्टली कल्याण से बात कीजिए और बोलो उनको।
0: मैं कल्याण को क्या, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है ठीक है, उसमें आपको कानून से दूर नहीं जाना चाहिए, कानून के साथ रह के कानून की पालना करके आप कानून के सहयोग के बात बन सकते हो।
1: ओके नवीन बैसला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी, थैंक यू। एंड वी हैव गॉट मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, द गुरुग्राम हिट एंड रन इंसिडेंट, एन आई विटनेस हैज नाउ स्टेप फॉरवर्ड टू स्पीक टू एनडीटीवी, द बाइकर हु कन्फ्रंटेड द अक्यूज्ड कल्याण बैसला हैज स्पोकन आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही सेज द कार वाज टेलगेटिंग शिवानी। You've heard what the lawyer has said, complete rubbish. The car was chasing her, tailgating her. The witness says three guys in the car, all were drunk. Besla tried to stop her twice with the car and then rammed her while overtaking her. Take a look at this.
2: I was on the road उस time पे और सिया ने just मेरे को cross करा और मैंने देखा कि एक car उसको बहुत बुरी तरह chase कर रही है road के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और odd लगा कि वो car ऐसे मतलब उसको chase कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो car वाला था ना उसने बहुत ज्यादा closeness मतलब बहुत ज्यादा close में था, वो बहुत ज्यादा एकदम tailgating कर रहा था bike की और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है, और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
3: अच्छा वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
2: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, देयर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे,
3: ओके
2: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
1: Joining me live now tonight on India Matters is Veena Gupta. She's a social activist from Gurugram. She also happens to be India's first female bodyguard. She's a woman professional who lives and works in Gurugram. She drives there, she rides there, and she lives in that city. Veena ji, aapka swagat hai. Is incident ko dekhkar, kya aap surprised the ki aisa reaction tha road par? Kyunki hum bhi Delhi mein rehte hain. और हम तो लगातार देखते हैं कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ज़्यादातर लेडी ड्राइवर्स या लेडी बाइकर्स के खिलाफ ऐसा होता है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप सरप्राइज थे इस वीडियो को देखकर?
4: देखिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी, पहली बात तो ये कि ये बहुत पुराने किस्से हैं, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि वुमेन आर नोन एज अ बैड ड्राइवर, तो जब भी कोई बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चलाती है वेदर इज अ कार या फिर बाइक, तो ये एक पेट्रियार्की माइंडसेट है कि क्यों चला रही है, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग को ईगो हर्ट होती है और खासकर वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं, बिकॉज वी हैव अ वुमेन बाइकर, वी हैव

0: मेल बाइकर, नॉट नेसेसरी कि फीमेल बाइकर के साथ ऐसा हुआ है, पीछे किस्सा हुआ था जहाँ पे मेल बाइकर के साथ भी ऐसा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पे. सो पॉइंट ये है कि ये ईगो गेम, जैसे अभी ये वकील जो इनके बोल रहे थे बहुत ही बदतमीजी से, मतलब यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि देखिए अभी भी उन्होंने ब्लेम किया है कि क्यों लड़कियां या क्यों राइडर ऐसे गाड़ी चलाते हैं. अरे भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले, पुलिस है, पुलिस ने उनको रजामंदी दी है, परमिशन दी है, वो उनकी हेड है कि आप कौन होते हैं, आप क्यों हिट करते हैं, आप क्यों फॉलो करते हैं, आप क्यों कम्पीट करते हैं. तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि जब भी वो ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं, एक तो आई थिंक कम्पीट करने की भावना, एक ईगो इशू है, मेल ईगो आई वुड से, सॉरी टू से, बट ये है हमारे समाज में कुछ गड़बड़ी है जिसको हम नहीं ठीक कर सकते. तो मेरे कुछ सवाल वुमेन राइडर से भी हैं और इन राइडर से भी हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोज यू नो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इनका कुछ नहीं कर सकते. जैसे आप देख रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एफआईआर नहीं होगी, वकील उनकी साइड लेंगे, पुलिस एक्शन करेगी नहीं करेगी, विटनेस देखेगी, तो ये लंबी गेम है. हमें क्या करना है, जब हम सड़क पे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आई शुड नो माई डूज एंड डोंट. पहला रूल, नेवर कन्फ्रंट दीज काइंड ऑफ पीपल, स्टॉप, पॉज एंड टेक एक्शन. तो यहाँ पे ये जो गेम होती है ना, ये गेम जो होती है एग्रीवेट करती है सिचुएशन को. तो मेरा मानना है कि जब आप फ्लाइट वर्सेस फ्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोज के हादसे हैं, तो हमें सिचुएशन को हाथ में उसी समय लेना है ताकि ये आगे एग्रीवेट ना हो. क्योंकि अब देखिए हम सब लोग चर्चा करेंगे, लंबा केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, बट एंड ऑफ द डे किसको चोट लगी, राइडर को.
1: Correct.
0: मुसीबत में कौन है, राइडर, उसकी डेथ हो सकती थी. तो इसका कोई मतलब हल नहीं है, हल मेरे पास ही है, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है. तो सबसे पहला नियम, आप कन्फ्रंट ना करें. अगर आपको लगता है कोई आपको चेस कर रहा है, पॉज, गाड़ी को आगे जाने दे. सबके गाड़ियों में हेलमेट में कैमरा होता है, उस कैमरे से उस एक्टिविटीज को, रजिस्टर नंबर जो कार का है उसको रिकॉर्ड करने दे. और अगर लगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला कि उसकी गाड़ी के काले शीशे थे, वी कैन मेक आउट कि काले शीशे पहली बात तो क्यों नहीं है, जो रूल है हमारे रोड सेफ्टी का, क्यों है काले शीशे, तो वो एक्शन लेना जरूरी है पुलिस वालों को. अगर मुझे लगता है काले शीशे हैं, लोग ड्रंक हैं, तो आप पॉज करके 2 मिनट के लिए रुक जाइए, उस गाड़ी का रजिस्टर नंबर नोट कीजिए, आपके पास कैमरा है हेलमेट में, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, और कोशिश करें 112 को फोन भी कर दें. तो ये कुछ आप अगर डूज एंड डोंट्स करेंगे तो आई थिंक हम सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे और ये जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होगी. क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है दुर्घटना, दुर्घटना घटी तो
1: जी, मेरा कुछ नहीं. सेकंड सवाल ये है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रोड रेज एक प्रॉब्लम है, मेन एंड वुमेन के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है. लेकिन इसमें मुझे नज़र आता है एक जेंडर इशू भी है. एक लेडी बाइकर है और उसमें ज़्यादा मेल ईगो सामने आता है, स्पेशली इस इंसिडेंट में साफ साफ नज़र आता है कि मेल ईगो प्रिक हुआ है, रेस कर रहे हैं, उसने उसको स्कोल्ड किया है, धमकी दिया है कि ऐसे मत चलाओ ऐसे, और he is basically taking revenge, he's teaching her a lesson.
0: बिल्कुल सही आपने बोला. मैंने पहले क्या बोला, पेट्रियार्की, मेल माइंडसेट है कि इवन अगर जैसे मैं यू नो कार रैली ड्राइवर हूं, अगर मेरी गाड़ी रैली भी नहीं करी है, नॉर्मल मैं एसयूवी चला रही हूं, तो आई हैव नोटिस की 4 गाड़ियां मेरे को फॉलो करेंगी, मुझे ओवरटेक करेंगी, और मैंने गलती से ओवरटेक कर लिया, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे गाली भी सुननी पड़ी, मुझे ऐसे नॉक करके बोला कि शीशा नीचे करो, तुम क्यों ओवरटेक कर रही हो. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मेल ईगो है, जेंडर इशू है कि एक तो वुमेन प्लस बाइक पे राइड कर रही है, बहुत बड़ा ये मेल ईगो हर्ट होता है कि क्यों. फिर वो लेसन देंगे आपको रोड पे, ऐसे शीशे मतलब हैंड से एक्शन करेंगे, शीशा नीचा करो, पॉज करो, रोको. तो यू आर राइट कि वो एक लेसन, एक ये ना सिक माइंडसेट है.
1: Absolutely.
0: और ये जो ऐसे कुछ लोग जो वकील सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ वो तो इनोसेंट है, उसको पर्दा कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि हाँ अभी मैं उसको पेश करूंगा. तो आई थिंक ये स्टार्ट होता है मेरे घर से. अगर घर वाले अपने लड़कों को
1: बिल्कुल
0: सही अपब्रिंगिंग देंगे कि मेल ईगो कुछ नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल, तो आई थिंक इसका समाधान.
1: आई कंप्लीटली एग्री विद यू वीना, एंड आई थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी टुनाइट ऑन एनडीटीवी. आई होप कि कल्याण बैसला जो अभी 36 आवर्स के ऊपर ही इज रनिंग, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज वांटेड, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस आल्सो हैव बीन अप्लाइड ऑन हिम, बट ही इज स्टिल रनिंग, एंड दैट शोज यू कि इतना जिम जाके इतना बॉडी बना के फिर दीज पीपल डोंट हैव स्पाइन टू फेस द एक्चुअल लॉ. वीना गुप्ता, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग.